0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि भाइरनि ऐं भेनरुनि खे दिलि वारी ईद प्रोग्राम में भली कार ऐं तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदो हलां त असांजे हिन प्रोग्राम दिलि वारी ईद में असांखे ज्वाइन कयो आहे मोरो जी बहितरीन आरजे लैला। जी हा बिल्कुल, लैला बि हिन वक़्तु असांखे ज्वाइन करे वरितो आहे। लैला बि अची वई असांजे प्रोग्राम में। लैला अस्सलाम वालेकुम। लैला अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम सलाम।
0: कहिड़ा हाल नवां जा? ठीक आहियो?
1: अलहमदुलिल्लाह ठीक आहियां। तव्हां कीअं आहियो?
0: शुक्र अलहमदुलिल्लाह अलाह जा एहसान। ॿियो हाल अहिवाल, तव्हांजी ईद कीअं गुज़री भला?
1: माशाल्लाह ज़बरदस्त, तमामु घणी बहितरीन गुज़री। शुक्र,
0: मतिलब हेॾी गर्मीअ में बि भली गुज़री आहे।
1: जी जी हैप्पी गुज़री अलहमदुलिल्लाह।
0: अच्छा, असां वटि त इंतिहा दर्जे जी गर्मी आहे। हाणे ॿियनि शहरनि में ख़बर न आहे केतिरी गर्मी हुई।
1: जी जी, ऐं
0: पाण त सॼो ॾींहुं घर में ई गुज़ारियो। मतिलब हीअ ईद आहे ॿारनि जी जहिड़ो न?
1: जी जी, ऐं गोश्त खाइण जी हूंदी आहे।
0: गोश्त खाइण जी हूंदी आहे, गर्मीनि में गोश्त बि न पियो वणे, छा करे माण्हू। ऐं ख़ुशियुनि जा मौक़ा आहिनि, अलाह ताला हर घर में इन क़िस्म जूं ख़ुशियूं हमेशा हमेशा
1: आणे।
0: ऐं उहो इहा जेका ईद आहे न, हर कंहिंजे घर में ख़ुशियूं बरकतूं ऐं रहमतूं आणे। क़ुर्बानी जी ईद आहे। क़ुर्बानी तव्हांखे ख़बर आहे अलाह ताला खे सभ खां वधीक पसंदीदा जेको आहे न फैल, उहो आहे हिन ईद ते क़ुर्बानीअ जो। जेका क़ुर्बानी माण्हू करे थो त उन में अल्लाह ताला तमामु घणो राज़ी।
1: जी जी, बाक़ी कथा बिल्कुलु।
0: ऐं बाक़ी क़ुर्बानीअ वारी ईद ते वरी पोइ हिकिड़ो मसइलो इहो हूंदो आहे, ख़ासि करे लेडीज़ सां त उन्हनि खे घर में वधीक कमु करणो पवंदो आहे। जी हा, ईअं ई हूंदो आहे। ऐं कॉलर बि अॼु असां सां लेला गॾु आहिनि, हलूं था हिकु कॉलर जे तरफ़। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी अदा, केरु किथां खां ॻाल्हायो पिया?
2: मोरो खां।
0: जी जी अदा, ठीकु आहियो? त भई सही आहे, ईद जूं बि मुबारकूं अवांखे। महिरबानी मुंहिंजा मिठा। अच्छा, इहो ॿुधायो, ईद तव्हांजी कीअं गुज़री आहे? हा, ॾाढो सही। अच्छा, प्रोग्राम शुरू खां वठी ॿुधो पिया? ठीकु आहे, पोइ हिन प्रोग्राम जो नालो छा आहे? अच्छा, मतिलब त तव्हां इहा शइ नोट ई कोन कई आहे त हिन ईद पंहिंजे हिन प्रोग्राम जो नालो छा आहे। चङो, भले ठीकु आहे, दोस्तनि खे शामिल कयो भले। हा, ईअं चओ न, ईअं चओ, दिलि वारी ईद आहे। ऐं असांजो नेटवर्क तव्हां ॿुधंदा आहियो? सही आहे, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, हाणे इहो दोस्तनि खे पंहिंजो शामिल कयो प्रोग्राम में। हा हा, ॿुधायो, फरमाइश कहिड़ी आहे?
2: दादा,
0: ॻाए ॿुधा, ॻाए ॿुधा।

0: अच्छा अन्या अन्या थोड़ो अगते हल ना बा
1: अगते बार बा को गुलाब दा कोन छै मेरे धोखा है
0: अच्छा ठीक है सही है वाली मेहरबानी दादा आसा के कॉल कई लिखे सान लिख कुर बतावाजा अधे फरमाइश कई है लीला त चवे तो आज ई दवा आई मुखे मिलाए को यार सा
2: जी जी हकीकत

0: सिर्फ गुलाम की है भाषा।
1: जाने दिल जाने अस्ते जाने दिल जाने अत जाने दिल जाने।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: GAFM। अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: स्ट्रेटजी खुद मुख्तियारी ऐं दिफ़ाई तवाज़ुन हासिल कयो। असां मुस्तक़बिल जे चैलेंजेस खां आगाह आहियूं ऐं मुंहुं ॾियण जी सलाहियत रखूं था। सदर आसिफ अली ज़रदारी जारी कयल पैगाम में चयो आहे त बुनियादुल महसूस ऑपरेशन में भारतीय जारीअ जो मुंहुं तोड़ जवाब ॾिनो। पाकिस्तान कंहिंजी बि ख़िलाफ़ जारीअ जो इरादो न थे रखे। असां ज़िमेवार जो चवण आहे त योम तकबीर पाकिस्तान जी तारीख़ जो अज़ीम ऐं फैसलाइतो ॾींहुं आहे। पाकिस्तान साबित कयो त असां दिफ़ाई सलाहियत रखूं था। शहीद ज़ुल्कार भुट्टो, नवाज़ शरीफ, डॉक्टर कदीर ऐं डॉक्टर समर मुबारक खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान जो फोन ते राब्तो। ईरानी सदर पारां ख़िते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जे किरदार जी बाखान। वज़ीर आज़म आफ़ीद मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि में अधु कलाक ॻाल्हि ॿोल जारी रही। ॿिन्ही अॻवाणनि हिक ॿिए खे ईद उल अज़हा जी मुबारकबाद पेश कई। ईरानी सदर चयो त अमन जे क़याम लाइ कोशिशनि ते पाकिस्तान जा शुक्रगुज़ार आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनी जो अमन जे क़याम लाइ अहम किरदार आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवण हो त उमीद आहे त ईरान ऐं अमरीका विच में जल्द अमन मुआहिदो थी वेंदो। पीएम आफिस मूजिबि ॿिन्ही अॻवाणनि गॾियल राब्ता ऐं मुशावरत जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ कयो।
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद।
0: आप सुन रहे थे GAF।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: नजर नहीं का चीज में आहे लकी खड़ो
1: नहीं। जरूरी थोड़ी है कि आप जिस चीज में अच्छे हो उसी को अपना

प्रोग्राम में कुछ मैसेजिस आयल मैसेज भी पे प्रोग्राम की सूह बढ़ाई हलूँ उ इंतजार कह हूँ चवंदा था गुलाब ए लीला छो अस मैसेज न पी पड़े त जरूर तहजा मैसेज सब

में कुछ मैसेजिस आयल आहिनि उहे मैसेज बि पंहिंजे प्रोग्राम जी सूह हंबड़ाईंदा हलूं, उहे बि इंतज़ारु कंदा हूंदा, चवंदा त गुलाब ऐं लीला अलाए छो असां मैसेज न पई पढ़े, त ज़रूरु तव्हांजा मैसेज पुछा थींदी हरपुर जी। बिल्कुलु सही था चओ, इएं ई आहे, वॾी महिरबानी साईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया।

प्रोग्राम में कुछ मैसेजेस आयल है वे मैसेज भी बने प्रोग्राम जी सू हमड़ाइंदा हलूं वे भी इंतजार कंदा हुंदा चंदा दा गुलाब ऐं बड़े पुछा थींदी हरपुर जी बिल्कुल सही था चओ इन ई आहे वॾी महिरबानी साईं तव्हां सां प्रोग्राम में शामिल थिया।

0: अपना शहर अपना घर मोरो और मोरो की आवाज।
1: खुशियों कुर्बानी और मोहब्बत का त्यौहार जी सखर FM 88 की जानिब से ईद उल अजहा मुबारक। दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बी और क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: FM Network Ya hai Sindh ji dil
3: Jada ishq lagane wala
2: Ye matyare FM 91.6 jo awaz
4: O mujhe mast malak hi maro sugar kha bhi jada Mir nahi ka cheez na aahe sakki kado
5: nahi Sindh ki ho to awaz bhi Sindh ki hai
6: GFM। ये देखा है कि लड़कियों की जिस जगह शादी होती है उस बना दी
7: जाओ जी सब तैयार, ये घराना है शाहकार।

0: सास की चौकी पड़ी होगी और लोग कह रहे होंगे मरहुआ बहुत ही कबीर खातून थी।
1: प्यार परिंदा फड़ फड़ करके फुर से यूं उड़ जाए, जो कहते थे वो अब कहते हैं।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी दादा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: ओ तो आवाज भी सिंह की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।

0: असां ईद उल अज़हा जे पुर मुसरत मौके ते देश तोड़े परदेस में रहंदड़ मुस्लमान भाइरनि यूनियन काउंसिल पुराणो गचेरे जो आवाज़
1: खुशियों कुर्बानी और मोहब्बत का त्यौहार जी सखर FM 88 की जानिब से ईद उल अज़हा मुबारक। दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए।
2: खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई वधाई वई है। जी हाँ, साल 2026 के लिए दाखिलाओं जारी हैं मुख्तलिफ शोबन में। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिक्स, रियाजी एंड शुमारियात जैसा अहम प्रोग्राम्स, ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BEd 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला, मुस्तहक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप भी मौजूद। एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन, घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी, उम्र की हद 35 साल। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताई बताई गई है, लिहाजा देर न करो, ऑनलाइन अप्लाई करो। www.apy.bnbw.edu.pk गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस करो प्या, हाने परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश है शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवा के दे ताजगी, सुकून ऐं हकीकी राहत, दिल की धड़कन के मुतवाजन रखण, गर्मी के असर के घटाइण ऐं जिस्म के तवाने देण लाइ शरबत रूहे राहत। रोजानो सिर्फ एक गिलास ऐं महसूस करियो थकावट का आजादी। कीमत सिर्फ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखानो, रजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड, गोश्त बाजार, गरीबाबाद, सखर। खमीस ऐं जुमो मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखाना, मसान रोड, नस लाला शहजादा चौक, रोहड़ी। राब्तो 0302-36-26-176। ईद उल अज़हा जे हिन बरकतिन भरे खुशियुनि सां महकंदड़ ऐं रूहानी अहमियत वारे पुरमसरत मौके ते नज़ीर खोसो पारां समूरनि मुसलमान भाइरनि ऐं भेनरुनि खे दिल जी गहराइयुनि सां ईद उल अज़हा जूं लख लख वाधायूं, नेक तमनाऊं ऐं दुआऊं पेश कजनि थियूं। अल्ला पाक खां दुआ आहे त हीअ ईद अव्हां जी ज़िंदगीअ में अमन, खुशहाली, सिहत ऐं बेशुमार खुशियूं आणे। पारां नज़ीर खोसो, बलोचिस्तान। राबते लाइ 0343-830-2796। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
3: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
2: DHMS सिंध,
3: RHMP इस्लामाबाद,
2: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
3: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
2: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
3: कमर दर्द,
2: अर्कुन हिस्सा,
3: जोड़ों का दर्द,
2: हेपेटाइटिस,
3: वजन की कमी या ज्यादती,
2: बे औलादी,
3: गंजपन का मुकम्मल इलाज
2: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
3: टाइम
2: हफ्ते से जुमेरात
3: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
2: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
3: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
2: राब्ते के लिए
3: 0326-22-00-440।

0: कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद मनाएं, सबको गले लगाएं। बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। जिए सक्खर एफएम 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अजहा मुबारक हो।
1: दिल जी कह रहे हैं ईद प्रोग्राम दिलवारी में भली कार चवा थी। तमाम बुधी रहा पेंजो पसंद का प्रोग्राम अज ईद वारो दिल्ली ईद मुबारक है। उनमें मां आई मुसा कजी सर आरजे गुलाब खान बेण आई।
2: जी बिल्कुल, असो जो ही शो है उन शो जा आखिरी लम्हा छो जो टाइम पूरो थियण वारो है। पूरे थियण वाले टाइम के दौरान एक बार तहजी कॉल भी वी कुछ जी मैसेज आन उ भी तहजा प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदी जन असा प्यार मान मैसेज मोकलिया। अच्छा, शेर मोहम्मद इमरान रिजवान फरहान अली चांडियो पान के बुधी रहा चवन लैला सुमरो गुलाब खान भेण के दिल की गहराइन से ईद जो मुबारकू। खैर मुबारकू मुझे मिठाई अदा जन खबर किथा लिखो है लैला इन गोठ बहादुर खान चांडियो का अदा मेहरबानी। अदा शेर मोहम्मद इमरान रिजवान फरहान चांडियो थैंक यू वेरी मच। पुलजी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो जो जो है मैसेज आयो है चवन था दिलशीर तीवणी के कलाम में असांखे कलाम बुधरायो दिलशीर तीवणी के कलाम जी जेका बोल आइन उहे उन लिखिया आइन तुंहिंजे चीश जो छलड़ो हुजां तुंहिंजे गीछीअ जो हार हुजां। डेडिकेट कंदा फौजी आजाद खान के। महरबानी मुझा मिठा तव्हां असांजे शो में शामिल थिया। अहिड़े तरीक़े सां कॉलर भी असां सां मुसलसल आहिनि। हलो था कॉलर दरवाज़ा। अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। कहिड़ा हाल आहिनि दादा? केरु ॻाल्हायो था? किथां ॻाल्हायो था?
3: सर मां आज आयाद अली सोलंकी स्टेशन सीता रोड
2: जी जी अदा साईं असांजो शो तव्हां ॿुधो पिया नेटवर्क ॿुधंदा आहियो सदा या सिर्फ़ अॼु पिया ॿुधो?
3: न सर डेली ॿुधंदा आहियूं तव्हांजो हर प्रोग्राम ॿुधंदा आहियूं सर।
2: पक
3: जी जी जी।
2: अच्छा ठीकु आहे, ईद कई अथई भला? ईद
3: शुक्र अलहमदुल्ला सर ईद कई ख़ैर सां।
2: पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु कई या विछोड़े में कई?
3: सर दोस्तनि सां बि कईसीं, रिश्तेदारनि सां बि कईसीं।
2: माना विछड़ियल ईद त कोन कई न जेके माण्हू रड़ियूं पिया था कनि? हा सही आहे, बहितर आहे यार, ईअं कजा न त सभु चवनि पिया घोड़ा यासीं असां ईद दुख सां कई आहे। तव्हां ख़ुशीअ सां ईद कई, वॾी महिरबानी आहे आला जी तव्हांजे मथां। अच्छा हाणे पंहिंजे दोस्तनि खे शामिल कयो।
3: सर मुंहिंजो चाचो आहे मिठो सोलंकी ऐं मुंहिंजी नंढड़ी आहे जेको तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रही आहे सूंह सोलंकी।
2: हा
3: सर असांखे हिकिड़ो कलाम ॿुधायो फोटे ज़रदारे जो ईद आई यादि।
2: कलाम तव्हांजो ॾाढो सुठो आहे पर हाणे टाइम वञी थोरो बचो आहे, मां कोशिश कयां थो न त सुभाणे जेको टी वारो असांजो शो थींदो न लैला जो ऐं मुंहिंजो उन में तव्हां वरी लाइव कॉल करे वठिजो तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। पक सही आहे
3: सर, इहा तव्हांजी महिरबानी, तव्हांजी महिरबानी, वॾी वॾी महिरबानी सर।
2: ठीक आहे महिरबानी तव्हांजे अलाह सां तव्हांखे ख़ुशि रखंदो। अहिड़े तरीक़े सां मैसेज बि आहे गोठ मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खां मोहम्मद हारून।

0: जो खूबसूरत आवाज़ जो वक्त भी पहुंची हुआ है पांजी पुजानी दे वरने खा मेरे हमेशा तांगे चंदा सी पांजो घणे का घणो ख्याल रखजो बाबा गर्मी घणी तव गोश्त थोड़ो खाजो बचाए रखो फ्रिज भरे रखो को मसलो ना है इने न लेला
1: जी हां ई कारण मिर्चन में इस्तेमाल कर पो को जन थी दन
0: हां पक्की गला
1: पक्की गला
0: ठीक है आज लेला असंगे भी गोश्त खाराईंदी पंजे ऑफिस की टीम के आई कारण मिर्चन में जदी ठाए खणी दिस आई दिसो ता त पो आई तहां भी कारण मिर्चन में भली ठाए खाई सको ता चंदा से बाबा गर्मी है नड़न बारन जो भी ख्याल रखो उन बाहर हरूभरू न मोकिलो गर्मी में कें कम कार जेके शहर में मू उन बिजली जो आधार हों ही हों बहाल पखे छाव का परे नतीजो गर्मी तमाम घनी है अल्लाह ताला तवा जिंदगी में खोड़ सारू ईदू आने खुश ईदू तवा घर में हुजन खुशू हुजन रहमतू बरकतू हुजन बे प्रोग्राम से मेजबान गुलाब खान भेण
1: लीला के इजाजत अल्लाह निगेबान अल्लाह वाही
0: अल्लाह निगेबान अल्लाह वाही।

0: अब आप सुनेंगे
1: कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं जज्बात और ख्वाहिशात की भी होती है। ईद उल अजहा का पैगाम है खुलूस और कुर्बत का। जी सखर FM 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक।
0: अब आप सुनेंगे जी FM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

जेको शायद वेंटबेल ऐसा कयो वो ईरान सां करे पिया सघूं ओमान न वियो दुरुस्त न कयो त ओमान खे बि तबाह करे छॾींदासीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी टीवी खे इंटरव्यू सदर डोनाल्ड ट्रंप जो त बस ते ईरान ते हमला रोकिया आबला हमूस ते हाणे कंहिंजो बि कंट्रोल न हूंदो ईरान वटि डील खां सवाइ ॿियो रस्तो न आहे यूरेनियम छॾण जे बदिले ईरान तां पाबंदियुनि में नरमी न कई वेंदी नई ईरान खे

0: carne, Mundi. Desde entidad grande, me pandita la ley. Desde entidad grande. Pero Mundi, ya la chica me dejaste buscando tu bebé. Ya la charti un día la niña te ve.
1: असांजे घर में को राम तो रुपयो आहे, असां सॼो ॾींहुं वेठा था रहूं, पंहिंजे बचे जे लाइ सॼो ॾींहुं वेठा था दुआऊं घुरूं, सॼो ॾींहुं वेठा था, सॼो ॾींहुं वेठा था ज़िक्र कयूं, मन को अलाह ताला पंहिंजो को मौजज़ो अता फरमाए। बाक़ी हिन इंतिज़ामिया में असां मजबूत थी पिया आहियूं, का समुझ में ॻाल्हि नथी अचे, को सुराग कोन थो मिले, चवनि था त असांखे का शइ कोन थी मिले।
2: अॼुताली ॾींहुं अॻु अॻवा थियल निकिरी उजाला परवीन जी बाज़ाबी जे लाइ वासन शहरनि जो घंटाघर चौक वटि धरणो। ॿुधाइनि चयो त निंगीअ जी बाज़ाबी जे लाइ जुड़ियल जीआईटी बि कोन थी जो नदिनो आहे। निंगिरी बाज़ार कराए परेशानी ख़तम कई वञे।

हैदराबाद सीता रोड मां पुलिस अहलकार समेत ॿिनि ॼणनि जा लाश हथ। हैदराबाद मां हाला नाके वटां अकरमबा मान जा शख़्स जो लाश हथ। सीता रोड मां पुलिस अहलकार वकार रिंद जो वॉटर कोर्स मां लाश मिलियो। वकार रिंद जे वारसनि जो चवण आहे त नौजवान बीमार हो, वेंदड़ दौरान दौरो पवण सबबि ॿुधी फोत थी वियो।

0: ऐं डोनाल्ड ट्रम्प जे नाले सां पाड़े खे ज़बह थियण खां बचाए वियो। बंग्लादेशी हुकूमत ओचितो मुदाख़लत करे डोनाल्ड ट्रम्प नाले पाड़े जी क़ुर्बानी रोकराए छॾी। बरतानवी ख़बर एजेंसी मूजिबि बंग्लादेशी घर वधार जे अहदेदार ॿुधायो त डोनाल्ड ट्रम्प नाले पाड़े में गैर मामूली दिलचस्पी वधण बाद सिक्योरिटी ख़र्चनि खे ॾिसंदे पाड़ो ज़बह करण खां रोकरायो। बंग्लादेशी घर वज़ीर सलाहुद्दीन अहमद हुकुम ॾिनो त 700 किलो वज़नी पाड़े खे क़ुर्बानी खां बचायो वञे, ख़रीदार खे पैसा वापसि कया वञनि ऐं जानवर खे ढाका जे क़ौमी चिड़ियाघर मुंतक़िल कयो वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ते ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस साथ ज़िंदगी भर का।
2: गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दे।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: जहां हर दिल खुशियों से लबरेज है, जहां कुर्बानी का जज्बा मोहब्बत में ढलता है, वहीं हम GAFM की पूरी टीम आपको और आपके प्यारों को ईद उल अजहा की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ है कि ये ईद आपके लिए

आपका साथ निभाती हैं। ईद मुबारक। खुशखबरी खुशखबरी अमाजी बारन जी बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिला जो शानदार ऐलान हाने पेंजे 4 साल जा डिग्री प्रोग्राम्स जने ते 2 साल जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV CMW सिंध जो आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल जो
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। FM 88 नेटवर्क, FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां बीजा नियर नहीं का चीज न आहे लकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: नया ड्रामा सीरियल दे सिर्फ एक्सप्रेस पर
1: जीए लतीफ सिंध जो आवाज ये मटियारे एफएम 91.1
0: तो आवाज भी सिंध जीए 88 नेटवर्क जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डूंगर खां भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे हकी करो नहीं।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एट के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिससे ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा से मिले, चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एट ब्यूटी क्रीम तराज बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी, कराची जी माहिर डॉक्टर अनुषा कुमारी फिजियोथेरेपिस्ट आणे अवां जी पंहिंजी शहर लाड़काणे में मुकम्मल प्रोफेशनल फिजिकल रिहेबिलिटेशन मशकूं ऐं जदीद तरीक़े जो इलाज करे रही आहे, जंहिं में रीढ़ जी हॾी, हॾनि ऐं जोड़नि ऐं फ्रैक्चर, कुल्हे जो जमींजरी, पठनि में छिकताण, मोहरनि जो सूर, लकवा ऐं मोच, फालिज यानी अधरंगो ऐं चेस्ट फिजियोथेरेपी जो इलाज कयो वञे थो। यादि रखंदा, डॉक्टर अनुषा कुमारी फिजियोथेरेपी में मरीज़नि लाइ फीस में 50% रियायत जो ऐलान कयो आहे, जीअं ग़रीब तोड़े अमीर हिन सहूलियत मां फ़ाइदो हासिल करे सघनि। एड्रेस: कराची मेडिकल सेंटर, लॻ घिंटी फाटक, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं। राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 03103435298।
4: मलूक, ओ मलूक,
5: ख़ैर त आहे नूरी?
4: जल्दी कर, जल्दी, पोए साल वांगुर हिन साल बि कप्तान हाइब्रिड सारनि जो बिज वठी अचो, त जीअं हिन साल बि चङी पैदावार हासिल करियूं।
5: कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज अवां खे ॾे 125 खां 140 मण फी एकड़ ताईं पैदावार, जंहिंजो ताक़तवर बिज बीमारियुनि खां रहे महफ़ूज़। आम बिज जे मुक़ाबले में कप्तान हाइब्रिड बिज सां मिले जजी पैदावार ऐं वॾो बूड़ो।
4: साईं, चइबो त हिन साल बि मुंहिंजा सोना कंगण पका।
5: हा हा, छो न। मिडलैंड इंटरप्राइजेज जो कप्तान हाइब्रिड सारिन जो बिज पंहिंजे वेझे कप्तान फ्रेंचाइज तां हासिल करियो।
4: राब्ते ऐं मालूमात जे लाइ
5: RSM लाड़काणो,
4: सजाद हुसैन बुघियो, मोबाइल नंबर 03121344205।
5: एड्रेस

0: नवीन फर्टिलाइजर पुरानी अनाज मंडी लाड़काणो। खुशखबरी, डॉक्टर अफजल हुसैन भुट्टो कंसल्टेंट आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन MBBS जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स कराची। माहिर अमराज हडे जा नवा पुराना फ्रैक्चर, हडे जो कैंसर, हडे जो नासूर, जोड़न जो पुरानो मूजी मर्ज, चेल जो सूर, बारन में हडे जोड़ जा मसाला, वडी उम्र में हडन जोड़न जा मसाला, पैदाइशी टिड़ियल पेर, रांदन में लगल धक, जोड़न मांस में गंद भरजी वञण, जंग बांह जा कैंसर, सुकी वाई, आर्थराइटिस, टुटल हडा बियन हडन जे बीमारियों जो माहिर सर्जन ट्रामा सर्जन। टाइम रोजानो मंझंद जो रात जो 8 बजे ताईं आचर जे दिन सुबुह जो 10 बजे खां मंझंद जो 4 बजे ताईं। एड्रेस नेशनल मेडिकल सेंटर, लेडीज जेल रोड, लाड़काणो। राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 03012950036।
1: अदी छा गाला एडो खुश पई नजर अची।
2: हाँ भेण, बस खबर ही कुछ एडिया हाने सा ओ आसानी सा बुधाए सगु थियूं।
0: जी हाँ, सिंधु जी पहरी फीमेल यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी, जै पेंजी FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री मा लखे रुपया कमाइण बदरा लाड़काणे में औरतन लाइ फ्री अस्पताल शुरू कई आहे, जिते बुकिंग जी बीमारियुनि मसलन पेशाब में रुकावट, जलन साड़ो, जख्म, बेओलादी, बुकी मसाने जी नाली में पतले करे थी। याद रखंदा डॉक्टर साहिबा चकास बुकिंग जो अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त कंदियूं आहिन। बस कमरे दवा जो थोरो खर्च मरीज पाण भरींदा। हाँ, एक्सरे, IBP CT स्कैन पिण अध पैसन में कराए डे थी। डॉक्टरन डां मरीज खणी वेंदड़ टी चौक सचल कॉलेज खां रात जो 9 बजे ताईं, आचर ते मंझंद जो 12 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। राबते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 03422414169।

0: खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। ये दिन है अपनों के साथ खुशियां मनाने का। इसी खुशी में स्पेशल ब्यूटी फेयरनेस क्रीम बनाने वालों की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक फ्रॉम द हाउस ऑफ स्पेशलिस्ट कॉस्मेटिक्स।
1: खैर तो हो यार जो हड्डो के खबर आ गरीबी हाल आ पैसा ऑपरेशन किथा कराया
2: भाउ परेशान न थी लाड़काने में डॉक्टर तरफा ऑपरेशन मुफ्त करे तो जो ठीक भी जल्दी माहिर सर्जन कंसर्वेटिविल हॉस्पिटल लाड़काणो इत जोड़न जे मरीजन जो लाह इलाज कयो वञे थो जैमे रोजानो चकास मुफ्त रिपे का भी फी नदन जो सूर किड जे हथन पेरन पैदाइशी जो ऑपरेशन रोजानो शाम जो जेखा शाम जो क्लिनिक बंद रहंदी रॉयल नंबर 0315871170
3: मुख्य कारण मोरूसी मोटापो वर्जिश न करण जो इस्तेमाल वगैरह हैं शुगर के मर्ज जो खास खास मथे ते धरण महसूस थे के लिए बकाया डॉक्टर नदी टी डिप्लोम टाइम बजे का मंझन जो एक बजे
4: मोबाइल नंबर 0334325121
5: बेकर्स एंड स्वीट्स पारा सिंध वासन के दिली ईद मुबारक सिंध बेकर्स ईद जे खुशियन में अवासा गड हित इंपोर्टेंट जनरल आइटम्स तरह जे मजेदार केकन जी वैरायटी सा गडो गड देसी घी सा तैयार थियल बेकर्स एंड स्वीट्स मेन शहर कांटेक्ट नंबर 4462 सिंध कापुर लाड़काणो 7605 सिंध बेपी रोड लाहौरी मोहल्ला लाड़काणो 111
6: GAFM वर्क
5: जिंदगी गुजरान के समझी बुधंदा रहो हाशमी जो प्रोग्राम कुरान सुबह 8 वक्त
7: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एग

वाइट एच ब्यूटी क्रीम प्लान के साथ आप विटामिन और जिसके मिनरल्स स्किन में हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार साथ वाइट एच का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

साईं इहा ॻाल्हि त आहे बिल्कुलु वाक़ई वाक़ई हक़ीक़त आहे असां मञूं था अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हो माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान हैप्पी ईद मुबारक जाना आपको भी मेरी जान ईद की बहुत सारी वाली मुबारकबाद और आप हमारे साथ फजीला मौजूद है बहुत शुक्रिया और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ नूरिस अंतोनियो भाई कहते हैं टॉपिक अदीम समंदर पर मौसम इंजॉय कर रहा हूँ करें जी करें करें करें मौसम इंजॉय करें सैयद फारूक हमारे साथ हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम आरजे सिद्रा मुस्कान ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक हो जनाब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और जनाब उसके अलावा मोहम्मद रिजवान है रिजवान जागीरानी फ्रॉम दुबई अस्सलाम वालेकुम सिडो अजी अच्छा क्या बात है क्या बात है जबरदस्त एंजॉय कीजिए घूमिए खाइए पिए और ईद को जो ना फुल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए किशोर भाई कहते हैं अदी आऊं टे ॾींहं खां ॻोठ में आहियां यकीन कयो शाम 6-7 बजे खां पोइ रूम खां ॿाहिरि निकिरंदो आहियां ॿाहिरि इहा सही ॻाल्हि आहे बाहि पई बड़े बाबा ॿाहिरि उन्हनि खां पुछो जेके वीचारा जो अचनि था प्रोग्राम करण शाबस बि नथा ॾियो हिन वसंदड़ बाहि में ईंदी आहियां वाला ॾिसो था फर्स्ट स्टे करे या बंदी के

ये तो वैसे सही बात है, और उन लोगों का भी क्या कहना जो भाई अगर बिला वजह ही जलते हैं तो क्या ही कर सकते हैं भला। यार कोई बात नहीं, मत जला करें, इतना काले हो जाएंगे। ये भी हल हमारे पास मौजूद है, हम आपका इतना ख्याल रखते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि आप काले हो जाएं, हम ये चाहते हैं कि आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि आप गोरे गोरे हो जाएं। वो भले तां सड़ंदा रहो पर फर्क न तो पए, बस तां जी स्किन जकना खूबसूरत थियण घुर्जे। ऐं तां पंहिंजी स्किन ते इस्तेमाल कयो बाबा व्हाइटिश।

ब्यूटी क्रीम व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांखे इज़ीली किथां बि मिली वेंदी, तव्हां लारकाणे वारा आहियो त रेशम गली मां वञी वठी अचो। बाक़ी जेके जेके जितां जितां ॿुधनि पिया तव्हां पंहिंजे मार्केट मां वञी वठी अचो, अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था त तव्हां उतां मालूमात कराए अचो। मिलनि था त ठीकु आहे, नथा मिलनि त पोइ तव्हां नंबर खे डायल कंदा हलो। जे नंबर ते तव्हां डायल करण खां बाद में राबितो करण खां पोइ हिननि खे ॿुधाए सघो था त बाबा असांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल न आहिनि ही प्रोडक्ट्स, ऐं अवेलेबल कराइण घुर्जनि, बिल्कुल कराइण घुर्जनि, जीअं तव्हांजे लाइ आसानी थी वञे ऐं तव्हां वञी भॼंदा भॼंदा वाइट एज जा प्रोडक्ट्स वठी अचो। ठीकु आहे न, सो वञी वठी अचो ऐं तव्हां नंबर डायल कंदा 03-15-799-0595। किशोर भाउ केरु थो चए बाबा बाइक ते ईंदा आहियूं, बाइक ज़िंदाबाद। ईअं थो हुजे त पोइ गर्मी गर्मी छो कयां भला, सोचण वारी ॻाल्हि न आहे। सोचो नथा तव्हां बि थोरो, मां ई सभु ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायां। वॾा थी विया हाणे तव्हां आख सिख। अरे सनाला बिरोही भाई मारे साधे वालेकुम असलाम, तव्हांखे बि भाई ईद जूं मुबारकूं हुजनि। मंठार अली बिरोही हमारे साथ, यदि ईद जो मुबारक हुजन व तवां के भी मंठार भा। यू और सिस्टर आपका हूँ, आपका अभी मोबाइल में आपको सुन आपका साथ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। नवीद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी मोहब्बतों के साथ हमारा शो सुनते हैं, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू थैंक यू। और यूनस अली खोड़ो हमारे साथ ही वेलकम करते हैं, और नाज बलोच है, नाज बलोच भाई हमें थर्ड पार्कर से सुन रहे हैं, और आपने सब सुनने वालों को इतनी मुबारकबाद दी है, बहुत शुक्रिया नाज भाई। और लखमीर अबड़ू हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम। अच्छा पोस्ट को आप लोगों ने लाइक और शेयर करना है, ये तो मैं भूल ही चुकी हूँ आप लोगों से कहना, तो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें। जब तक मैं नहीं बोलती तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप करते भी हैं, तो पोस्ट को लाइक और शेयर कर दें ताकि आप लोग जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोग हैं और जो ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि भाई जान हम खूबसूरत कैसे हो सकते हैं, तो आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, खूबसूरत रहिए, और इसके साथ साथ हमारा ये जो प्रोग्राम है वो सुनते रहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोगों को इस तरह की बातें पता चलती हैं जो कि शायद आप नहीं जानते हैं। आपकी खूबसूरती हो, आपके चेहरे पर एक्नी हो, आपके चेहरे पर ये नहीं आपको समझ आता कि हम कौन सा प्रोडक्ट लगाएं, तो ये सारी बातें आपको हमारे इस प्रोग्राम में पता चलती है। तो हमारा प्रोग्राम सुना करें, उन तमाम दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें जो कि अपनी खूबसूरती के मामले में परेशान बैठे हैं।

अच्छा आदिल पूछ रहे हैं कि आपने मेहंदी लगाई है ईद पर? हाँ जी मैंने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। वैसे ये उन लोगों की तो लय होती है जो खुद मेहंदी लगाते हैं, तो मुझे तकरीबन लोग ये कहते हैं कि भाई असांखे तव्हां खां थोड़ी जेलसी थींदी आहे छो त तव्हां पाण ॾाढी भली भली मेहंदी हणंदा असांखे न हणंदा तो ये है भाई उन लोगों की लय है जो खुद मेहंदी लगाते हैं। तो मैंने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई है खुद को। और मुझे ये लग रहा है कि इस मरतबा मेरी मेहंदी ने कलर भी बहुत अच्छा किया है। इतना ज्यादा कलर शायद कभी मेरी मेहंदी ने किया होगा जो इस मरतबा मेरी मेहंदी ने कलर किया है। अब पता नहीं क्यों इतना कलर किया है ये नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा किया है। वैसे अच्छी बात है, लड़कियां तो इतने में खुश हो जाती है कि उनकी मेहंदी ने कलर अच्छा किया है। हाँ जी देख ले बस, लड़कियां इतनी मासूम होती है सच्ची।

अच्छा दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहती हैं चंदा, आप कैसी हैं? ईद का दूसरा दिन मुबारक आपको भी मेरी जान कहती हैं। आप लोगों की तरफ क्या चल रहा है? हमारी तरफ तो गोश्त चल रहा है, गोश्त इधर से गोश्त उधर से गोश्त इधर से गोश्त उधर से गोश्त तो गोश्त गोश्त चल रहा है। आपके यहाँ क्या चल रहा है? और कहती है कि कौन सा कलर पहना है आज मेरी प्यारी चंदा ने? मैं सोच रही हूँ ये कौन सा कलर है, शायद इसको सी ग्रीन कहते हैं, हाँ शायद। क्योंकि पहले ये होता था कि मेरे पास कलर्स की ना चॉइस नहीं होती थी, मैं सिर्फ काले कपड़े पहनती थी, काले कपड़े। लेकिन अब ये है कि मैं मुझे समझ आ गई है कि भाई मैंने तरह तरह के कलर्स जो है ना वो ट्राई करे, और मैं जैसे

0: से तरह तरह के कलर्स ट्राई करती जा रही हूँ। मैं कहती हूँ ये कलर तो मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, मैंने पहले क्यों नहीं पहना। बिल्कुल एक नया सा कलर मैंने पहना है मुझे। अच्छा किशोर भाई कहते आऊँ भी मेहंदी लगाई दो यहाँ, सच्ची बुधा कंखे लगाई तो ओके जी। ये SD मजीदानो भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी मजीदानो भाई तुम के वेलकम चाहूं था। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते सिद्रा आज रिजवान लड़का नहीं आया तो वो आज बिजी थे, वो तो मैंने कल ही कहा था कि वो आज वाले प्रोग्राम में शायद ही नहीं आ पाएंगे। मिस कही ना ओपन को, मुझे पता था। अच्छा चाचा भी कह रहे हैं कि असा भी कल डाडी निंड कई आ। हाँ ना मुख्य खबर आए, मतलब तां डेली अगर निंड कयो पर ईद वाले डी निंड तो जो हूँ उन लेवल ही अलग उन निंड जो कुछ मजो ही अलग हों।
1: सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो त 28 मई 1998 में कारगिल जे पहाड़नि ते कामयाब एटमी धमाका करे स्ट्रेटेजिक ख़ुदमुख़्तियारी ऐं दिफ़ाई तवाज़ुन हासिल कयो। असां मुस्तक़बिल जे चैलेंजेस खां आगाह आहियूं ऐं मुंझण जी सलाहियत रखूं था। ऑपरेशन बुनियाद महसूस ऐं भारतीय जारियत जो मुंहं टोड़ जवाब ॾिनो। असां ज़िमेवार ऐं अमन पसंद क़ौम आहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो चवणु आहे त जम्मू तकमीर पाकिस्तान जी तारीख़ जो अज़ीम ऐं फ़ैसिलाइतो ॾींहुं आहे। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज़ शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऐं डॉक्टर समर मुबारक खे खिराज तहसीन पेश कयां थो। अठावीह यौम तकबीर ते हथियारबंद फ़ौजुनि जे सरबराह जूं क़ौम खे वाधायूं ऐं SPR मजिद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ऐं नेवल चीफ क़ौम खे वाधायूं ॾिनियूं। पाकिस्तान एटमी ताक़त बणिजी उभरियो, उन ॾींहं ते पाकिस्तान जो ॾखिण एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल थियो। ही कामयाबी पाकिस्तानी क़ौम पाक फ़ौज जी क़ुर्बानीनि जो समर आहे। पाक फ़ौज मुल्क जी सलामती, खुशहाली ऐं इस्तेहकाम जे लाइ पाकिस्तान जी दिफ़ाई स्ट्रेटेजिक सलाहियत मुक़दस क़ौमी अमानत आहे।

जेको शहर वेनेजुएला सां कयो उहो ईरान सां करे पिया सघूं। ओमान नव जो दुरुस्त न कयो त ओमान खे बि तबाह करे छॾींदासीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिकी टीवी खे इंटरव्यू। सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते ईरान ते हमला रोकिया। अबना हरमुस ते हाणे कंहिंजो बि कंट्रोल न हूंदो। ईरान वटि डील खां सवाइ ॿियो रस्तो न आहे। यूरेनियम छॾण जे बदिले ईरान तां पाबंदियुनि में नरमी न कई वेंदी। नई ईरान खे हथ में हथियार हासिल करणु ॾींदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ऐं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहितरीन शख़्सियतूं आहिनि। ट्रम्प जे दबाव में न ईंदासीं। आबदा हरमूस जो कंट्रोल ईरान वठी रहंदो। ईरानी पार्लियामेंट जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अटी धमकीअ ते रद अमल। सदस्य चवंदा त ईरान खे यूरेनियम रिसाव हक़ हासिल आहे। पाबंदियुनि में नरमी जो मुतालबो जाइज़। आख़िरी जो चवणा आहे त अमेरिका सां हाल बाबति अञा ताईं इतफ़ाक़ नाहे थियो। जंगबंदी बावजूद अमेरिका जा ईरान ते ॿीहर हमला। ईरान जे फ़ौजी हंधनि खे निशानो बणायो वियो। अबना हरमूस में वापारी जहाज़नि खे ख़तरनि खां महफ़ूज़ बणायल आहे। ईरान पारां बि जवाब में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणाइण जी दावा। ईरान जे पासान इनकलाब जो चवणु आहे त जवाब में अमेरिकी फ़ौजी अॾे खे निशानो बणायो वियो। इन ई अॾे सां ईरान ते हमिलो कयो वियो हो। रूसी ख़बर एजेंसी मूजिबि केल सां भरियल अमेरिकी जहाज आबना हरमूस मां गुज़रण जी कोशिश कई। पासान इनकलाब जहाज ते वार्निंग शॉट फायर करे जहाज खे वापसि वञण ते मजबूर करे छॾियो।

0: हिमत हासिल कंदा। सऊदी वजीर पारां छिकतार घटाइण में पाकिस्तान जे हकारी किरदार जी साराह।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
3: अख्तियार कर गैर जरूरी तौर ते बाहर न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो। मोहम्मद बुगियो इंस्टीट्यूट ऑफ जे कोर्स लाए दाखिलाऊं जारी आहन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन, क्रिटिकल केयर, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर। दाखिला फीस 5,000, महवार फीस 4,000। रिकॉग्नाइज्ड बाय अलाइड इन हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एफिलेटेड विद सिंध टेक्निकल बोर्ड। उमर बुगियो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, मीरवा रोड नियर डिस्ट्रिक्ट जेल, डिफेंस सिटी, मीरपुर खास। मालूमात लाए 03002823667, 03372144436।
4: आपके शहर मीरपुर खास में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद खान पहोड़, MBBS MS आर्थो, माहिर अमराज, हड्डी वो जोड़, पीर कॉलेज वो अस्पताल, मीरपुर खास। रब्ते के लिए फोन नंबर 02338216693।
5: इसरार मोहम्मद हयात खान, सफेद मोती जो ऑपरेशन, बजरिया लेजर फेको, कारे पानी जो इलाज ऑपरेशन, पर्दन जी बीमारिन जो इलाज अखियन जी बिन बीमारिन जो इलाज कंदा आहिन। टाइम रोजाना सुबह 10 वगे का 1 वगे ताई, शाम 6 वगे का रात 8 वगे ताई। आचर मोकल है जुमे जे दी ऑपरेशन कया वींदा। एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान, लेजर अखियन जी अस्पताल, सर सैयद रोड, गरीबाबाद, मीरपुर खास। मोबाइल नंबर 03032617077। ईद मुबारक, ईद मुबारक। असा ईद अल अज़हा जे पुरमुसरत मौके ते साबिक सेनेटर मोहत जे गुठ जी जुड़े जो बिरादरी आई मुल्क पाकिस्तान में रहंदड़ खास खेली बिरादरी के दिल जी गहराइन सा ईद उल अज़हा जूं लख लख वाधायूं पेश करूं था। पारा गुलाम फारूक खास खेली, अली गुल खास खेली, मोहम्मद यासीन खास खेली, काउंसलर यूसी सिंधड़ी, गोठाजी मोहम्मद उर्स खास खेली, यूनियन काउंसिल सिंधड़ी, तालको सिंधड़ी, जिलो मीरपुर खास।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत है शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 03062447700।
7: कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी, आपके कारोबार की मशहूर का सबसे बड़ा जरिया जी मीरपुर ऐलानात, शादी ब्याह की मुबारकबाद, मिलाद, जलसा, स्कूल कॉलेजेस, ब्यूटी पार्लर्स, कॉस्मेटिक्स शॉप्स, जनरल और मेडिकल स्टोर्स, बुटीक, गारमेंट शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, ज्वेलर शॉप्स, अस्पताल, फ्री मेडिकल कैंप्स, NGOs, फूड पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, शोरूम, ऑटो शॉप्स, हाउसिंग स्कीम्स, क्रेडिट ٹورنامنٹس، ثقافتی میلہ، ہوٹلز، ریسٹورینٹس، پیٹرول پمپ، سی این جی اسٹیشن، شادی ہال، مختلف اقسام کی پروڈکٹس، فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈ شاپس، سیڈ کارپوریشن، سرکاری اور غیر سرکاری اعلانات کے اشتہارات کے ساتھ ساتھ لائیو برینڈیڈ پروگرام سے لگائیں اپنے کاروبار کو چار چاند، وہ بھی آپ کی توقعات سے کم ریٹس میں۔ تو ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ مینیجر، موبائل نمبر 0332272431 اور 0333372071۔

It's 2:15 p.m. This time... check is brought

में तो क्या चीजें ऐड की गई है, तो आप लोगों को बताते चलें, सबसे ज्यादा जरूरी वाली बात ये होती है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी स्किन के ऊपर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये चीजें आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट्स तैयार कैसे किया गया है। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है और सेंसिटिव स्किन के ऊपर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल डाले गए होते हैं तो फिर आपकी स्किन जो है ना वो खराब होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसा किया करें, उन्हीं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें जो प्रोडक्ट आपके ऑल स्किन टाइप के लिए हो और जो लाइट वेटेड फार्मूले के साथ तैयारशुदा हो और जो नेचुरल अज्जा से तैयार हो। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में और जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि लाइट वेटेड फार्मूले के साथ तैयारशुदा है और एक मजे की बात कि ये नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा है और एक मजे की बात कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। तो इतने जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर आपके लिए मौजूद है, आपके पास है, तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए और आपको मिल जाएंगे इजीली। अगर नहीं मिल रहे तो उसका हल भी आपके पास मौजूद है कि आप क्या करते हैं, नंबर के ऊपर आता करते हैं और नंबर है जनाब 03-1579-0595। ओके जी, तो जल्दी जल्दी से नंबर डाल करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरत दिखना ये हर किसी की ख्वाहिश होती है और खूबसूरत रहना ये हर किसी का हक होता है। तो खूबसूरत रहिए, खूबसूरत दिखिए और इस्तेमाल करते रहिए व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन प्योरी प्रोडक्ट्स। इसी के साथ साथ आज ईद का दूसरा दिन है जनाब, ईद का दूसरा दिन है और यहाँ पर बिल्कुल जी बहुत सारे लोग नोने पुत्र बनकर काम कर रहे होंगे या नोने पुत्र बनकर आराम कर रहे होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप तैयार शैयार होकर या तो काम कर रहे होते हैं या तो फिर आप आराम कर रहे होते हैं, ये दो ही सूरतें हमारे पास होते हैं। आप कौन से लोगों में शुमार होते हैं ये भी जरूर बताइएगा और साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं 888-1 के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि आप बहुत सारे लोगों तक हमारी पोस्ट को पहुंचा पाए और उन बहुत सारे लोगों को पता चल सके कि जनाब व्हाइट एज प्योरी प्रोडक्ट्स एंड स्किन प्योरी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। और यहाँ पर हम दूसरे घंटे में आ चुके हैं तो जनाब पैनल की जाने मैंने देखा तो बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठा हो चुके हैं, तो पैनल की जाने बातें और बहुत सारे मैसेजेस पढ़ लेते हैं। बाकी जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है वो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। ओके जी, सो ये हमारे साथ हैं जी नूरिस एंटोनियो भाई फ्रॉम ओके जी, आप हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अच्छा चलिए भाई ने गाने की फरमाइश कर दी है, बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगा देंगे डेडिकेटेड स्पेशली आप ही शनूर हदीसा आसिम एंड नाया आपके नाम कर दिया आपने गाना। और उसके अलावा दूसरा मैसेज करते हैं चाह लाइन अदी तमान जा अदी आपका भाई आपसे कितना दूर बिठा है फिर भी आपके साथ है। बिल्कुल जी मोहब्बत हूँ ये तवहां असा गड हूँ हो ये तवहां जो मोहब्बत जो इजहार है अल्लाह करे ये मोहब्बत हमेशा ये कायम कायम रहन। और उनखा अलावा जिकवा ने गाना मोट भला भला मौजूद आंदा सा गडो गड गाना भी बुधंदा अलंदा से इरम कहती है कि मैं इरम हूँ अम्मी के घर से दिलबर आपी मेरी सिस्टर भाभी की फरमाइश पर प्लीज सॉन्ग लगाइएगा असा कंबर वारा वाइस बाय फाइज वाली। चले मैं कोशिश करूंगी आपकी पसंद का गाना लगाएंगे, जैसे मैंने आज कोशिश करी थी कल जुमा है तो कल मेरा प्रोग्राम नहीं होगा तो मैंने ये सोचा कि जितने भी अच्छे ऐसे ईद वाले गाने तो वो मैं आज के प्रोग्राम में लगा लूंगी, लेकिन ऐसा है कि आप लोगों जब फरमाइशें आ जाती हैं तो फिर मैं थोड़ा सेकंड हो जाती हूँ।

ओके जी, क्या बात है, ये हमारे साथ माधुरी टॉपिक। डियर स्वीटी, कहीं नहीं जाना, गर्मी है और इवनिंग को प्लान भी है जाने का डियर हस्बैंड के साथ। चलें जी, जाइएगा। सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सभी सुनने वाली लड़कियों को। और फजीला हमारे साथ माधुरी, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। और शाम के टाइम जाइएगा जी घूमने कहीं बाहर, वैसे उन जगहों पर नहीं जाइएगा जहाँ पर काफी ज्यादा रश होता है। तो जी हमारे साथ ही, अस्सलाम वालेकुम, मैं लेला परी फ्रॉम कंबर। आप कैसी हैं सोनी? मेरी और बाजी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत ज्यादा ईद की मुबारकबाद हो। और उसके अलावा ये है जी बाजी सदरा, आई होप कि आप फाइन होंगी। नाइस सेकेंड डे ऑफ ईद मुबारक एफएम की टीम को। मिरपुर खास से उम्मीद अली लाशारी है। सलाम राशिद लाखो, अदील अबरो, लाल मोहम्मद, सोहबत लाशारी, चोवन कुमार एंड यू।

ओके जी, क्या बात है, भाइयों को वेलकम करते हैं। और इसके अलावा है जी बाजी सिद्रा, आपका शो वेरी वेरी नाइस है। हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोस्तों से मिलने गया हूँ, मीरपुर खास से उम्मीद अली लाशारी, सलाम चोवन कुमार, रंजन फरहान कोरी, कुर्बान खास के लिए अदील अबरो, खालिद जुनेजो एंड यू। ओके जी, बहुत शुक्रिया भाइयों को। एरम कहती है मेरी प्यारी आप ही कल मेरी, अच्छा यानी कि कल ही आपने कुर्बानी कर ली, चलें ठीक है, बहुत बढ़िया। और चाचा खालिद आप हमारे साथ हैं, वैसे गानों चाचा मैं कोशिश कदम ताजो हलाया कल वारो, बिल्कुल गानों तवाजो हलायो सी, हलायो न हो सी, मां रखियो पर वो गानों थोड़ो स्लो हो, सो न वजह से असा जको ना बियो गानों लगायो सी, थोड़ो थोड़ो मतलब फास्ट गाना बुधण जो ना मजो ही पांजो होंदो है, सो थके लगाना जगे ता असा डेली बेसिस ते वैसे ही बुधण दा सी लास्ट में, पर थोड़ो ईदर जे डीन ते ता थोड़ो थके लगाने का परहेज करियो, डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा ये हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साइमा मीर, माशाल्लाह मक्खन जैसी आज मुस्कान, आप कैसी? बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो तुम्हें, दुआ है रब्बे कायनात से अल्लाह पाक आपको ऐसी बहुत ईदें नसीब करे, इस दुनिया की हर खुशी नसीब करे और अम्मी जान का प्यार साथ सदा सलामत रहे, आमीन आमीन आमीन। और ईद मुबारक प्यारी, लव यू, मिस यू, लव यू टू मेरी जाना, और आपको भी मिस यू टू, ईद की बहुत सारी मुबारक हो आपको भी। और लीला कहती है मेरी तरफ से सर को और रुखसाना और सीमा को ईद मुबारक, और सब सुनने वालों को भी ईद मुबारक। ओके जी, लीला परी आपको वेलकम करते हैं। मकसूद मला कहते हैं सिद्रा मुस्कान सुबह आपको ईद मुबारक। चले चले ये भी ठीक है, हमने कबूल कर लिया, बहुत शुक्रिया मकसूद मला, आपको वेलकम करते हैं। और ये हमारे साथ है सिद्रा, अच्छा ये सकलीन अब्बास हमारे साथ है, आप कैसी, उम्मीद है कि अच्छी होंगी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सदका पंचतन पाका। ओके जी थैंक यू सो मच इतनी प्यारी दुआएं देने के लिए। और ये मौलाना इस्लाम मदद बाजी आपका बड़ा ब्रादर है, ऐसा में सुनकर जल्दी से शो में शामिल करें, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं मेरा हक ज्यादा है। जी जी बिल्कुल आपका हक ज्यादा है, आपका मैसेज जब भी आएगा फट से शामिल कर देंगे, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। और क्या कहते हैं सदाकत हुसैन मीरानी साहब बचल शामियानी सखर से आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और ये कहते हैं बाजी ईद का दूसरा दिन मुबारक हो, और बाजी हम गोश्त बांट कर करके थक चुके हैं, अब आप शायद आराम कर रहे हैं। लाड़खाना से इमरान अली ब्रोही हमारे साथ है, क्या बात है। वैसे लड़कों की इस वाली ईद जो है ना, ये वाली ईद लड़कों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि लड़कों को सिर्फ यही काम होता है गोश्त बांटने वाला काम, बेचारे पता नहीं कहां कहां जाते हैं गोश्त बांटने। शाबाश दवाला। ओके जी बिल्कुल, ये खैर दो से तीन दिन हैं जिनमें आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, बाकी तो आप सारा साल रेस्ट ही कर रहे होते हैं, तो काम किया करिए, अच्छी बात होती है। अच्छा ये फिरदौस भाई कहते हैं हैप्पी ईद बाजी, सोचा था इस बार बहुत ज्यादा गोश्त कलेक्ट करूंगा, पूरा साल खाऊंगा, लेकिन फ्रिज खराब हो गई, ये है अपनी किस्मत। अरे भाई फिर आप ऐसी सोच रखती नहीं, मैंने तो पहले ही बोला कि हम जो सोचते ना वो होता नहीं है, तो इसीलिए बस आप ऐसा सोचें कि आपने जो गोश्त कलेक्ट किया है ना वो उन लोगों में बांटे जिन लोगों को जरूरत है, अच्छी अच्छी लोगों में जो कि भाई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में गोश्त कम बनता है, वो गोश्त खरीद नहीं कर पाते हैं, तो उनको आप गोश्त जी ये बांटिएगा, कलेक्ट मत किया करें, पूरा साल आप गोश्त खाकर क्या करेंगे, आप खरीद करेंगे अगर आपकी इतनी हैसियत है, तो ये सारा गोश्त तो आप कलेक्ट करके रखते ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए अल्लाह ने आपको जो है ना सजा दी, पहले से आपकी फ्रिज खराब हो गई, तो ये बांट दीजिए पूरा गोश्त, और खुद भी खाइए, आसपास के लोगों में भी बांटिए, ताकि सारे लोगों के घरों में गोश्त बने और सारे लोग खुश रहें। साइमा मैं कह रही माशाल्लाह सिद्रो प्यारी, मैं तो ईद अपने गाँव में मना रही हूँ, आज खैर से कुर्बानी भी कर दी, अभी आपके पास आ गई शो में, शो मस्त है, एक और मुबारक हो। हाँ जी हाँ जी बहुत शुक्रिया। और कहती निगत नाज प्ले कीजिएगा, मुख्य पैसे न खपन तू जो प्यार घुरजे जाए बुदा पसंद। अच्छा ये हमारे साथ है, सलाम बहना ईद मुबारक टू यू। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आपको भी ईद मुबारक हो। और ये वाला गाना मैंने लगाना था और ये वाला प्ले हो गया, चलो ये वाला गाना हम सुनते हैं, ये गाना बड़ा ही मस्त है, ये तुर्की सॉन्ग है जो कि ईद का गाना है।

अच्छा ये हमारे साथ है सलाम भाई ना, ईद मुबारक हो बाजी, बस आपने इतना मैसेज किया, आपने नाम नहीं लिखा, सो मेरे प्यारे भाई आपको वेलकम करते हैं थैंक यू के साथ। और बाजी सिद्रा आई होप कि आप फाइन शाइन होंगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चौवन कुमार हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू, आपको वेलकम करते हैं दोबारा से। मुनव्वर मुगल हमारे साथ मीरपुर खास से कहते हैं ईद मुबारक दरा मुस्कान, अल्लाह करे। अच्छा कहते अल्लाह करे मीरपुर खास के आज भी आपकी तरह प्रोग्राम करने लग जाए, शायद उनको मेरा प्रोग्राम पसंद नहीं आता, तो ये दुआ आप शायद ना करें, बस आप लाड़कना से मेरा प्रोग्राम सुना करें। बहुत शुक्रिया जी मुनव्वर मुगल। और बाजी सिद्रा आई होप कि आप फाइन शाइन होगी। जी जी चौवन कुमार भाई, आपने इतने सारे मैसेजेस एक ही मैसेज को बार बार शेयर कर दिया है, बहुत शुक्रिया। शायद लगता है आपकी ईदी काफी सारी जमा हो चुकी है, जो कि आप पैनल पर मैसेज करके थोड़ी सी शायद वेस्ट कर रहे हैं। वेल आपको वेलकम करते हैं। अच्छा ये हमारे साथ हैं जी वफा अब्दुल गफार खास के लिए फ्रॉम न्यू जतोई, आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, आपको और आपकी पूरी टीम को। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक हो। लीला परी कहती ईद के तीन ही दिन, अच्छा तीसरे दिन सर को आना चाहिए, जुम्मे के दिन। अच्छा चाचा कहते एक और मुबारक, वो किसकी, वो प्रोग्राम की मुबारक रही है, वो काफी दिनों के बाद आई ना, इसी वजह से शायद आप कुछ और ना समझे, इसलिए मैंने वजाहत दे दी।

ओके जी फुल जी स्टेशन खां फौजी पठान खान खोसो है सिदरा छोकरी ॾाढो किलो था घटि किलो माण्हू नज़र हणंदव हा माण्हू नज़र हणंदा आहिनि मूंखे पर पोइ बि मां न मुड़ंदी आहियां ॾिसो त मां केॾी बिल्ली आहियां अदा तव्हां भला ॿुधायो त गोश्त खां न न बाबा गोश्त एतिरो न खाईंदासीं बसि थोरो थोरो खाईंदासीं ओके जी बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आप हमारे साथ मौजूद है नूर सिंतनियो भाई हमारे साथ थैंक यू सो मच नूर सिंतनियो भाई काले जुड़े जो चाचा खाले थे कहते मेरे पास चले आपको बस्ती तो नहीं चलता ना समझा करे

हाँ मैं भी वही सोच रही थी आज निदा पता नहीं क्यों आई शो में. निदा शायद बिजी होगी या वो बीमार होती है शायद. भाई नाम लेना चाहिए, ऐसे इंसान प्रोग्राम में होने चाहिए. ओके सर, प्रोग्राम है जनाब ईद की महफिल, आप हमारे साथ साथ मौजूद है, गपशप चल रही है आप लोगों के साथ साथ, बड़े मजे आ रहे हैं जी. हमारी तो ईद बन जाती है जब आप हमारे साथ मौजूद होते हैं. और यहाँ पर जनाब वाइडिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जी, स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरती को बढ़ाते जा रहे हैं, खूबसूरत होते रहे और खुश भी रहे और ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करें. यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं. तो सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ.

जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम सबको जाए भूल, चारों तरफ फैलाए खुशियों की मुबारक।

सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिंडी हन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम

पंहिंजे शहर लाड़काणे में मुकमल प्रोफेशनल फिजिकल रिहेबिलिटेशन मशकूं ऐं जदीद तरीक़े जो इलाज करे रही आहे, जंहिंमें रीढ़ जी हॾी, हॾनि ऐं जोड़नि ऐं फ्रैक्चर जा मसला, कुल्हे जो ॼमी वञणु

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं काची रह की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी 88 नेटवर्क।
3: ये एफएम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोर और मीरपुर खास मटियारी सकरन नेहरापुर मातली और ना के लाइव स्टूडियो से आपके और प्रोग्राम सुन रहे हैं ईद की महफिल और इस प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जनाब, ईद की महफिल प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए ये चीजें तो कॉमन है कि आप लोगों को खूबसूरती मिलने वाली है भाई जान। तो अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती को हासिल करना चाहते हैं और हमेशा खूबसूरत रहना चाहते हैं तो आप भी इस्तेमाल कीजिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, इसी के साथ साथ आप लोगों को बताते चलेंगे भाई जान प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं। टाइम इतना तेजी से गुजरता जाता है पता ही नहीं चलता। ओके जी, यहाँ पर अगर आप हमारे आइए, आप कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब ये भी बताइए ईद का दूसरा दिन आपका कैसा गुजर रहा है। ओके, सो गाने खैर से आप लोगों के काफी सारे जमा हो चुके हैं तो मेरा ये दिल कर रहा है कि भाई मैं ठीक है गाने लगाते जाएं ताकि आप लोग में से कुछ लोग तो हों जिनके गाने चल सके आज के प्रोग्राम में। ये वाला गाना हम सुनेंगे और इसके बाद जो है ना वो मजीद गाने जो रहते हैं वो लगा

अच्छा बाजी, अच्छा ये हमारे साथ हैं सकत हुसैन मीरानी साहब, बच्चल शाह मियानी सखर से। क्या कहते हैं बाजी, आपने क्या मेरा एसएमएस डिलीट कर दिया? भाईजान पैनल पर मैसेज डिलीट नहीं होता है, तो अगर मैसेज देर सवेर शामिल किया जाएगा प्रोग्राम में, थोड़ा सा सब्र कर लिया अगर इतने सारे लोग होते हैं तो। भाई मैं थक जाती हूँ, किस किस के मैसेज पढ़ूं। और ये शोनी हमारे साथ कहती है, आपीजान मैं भी आ गई आपके शो में अपने। अच्छा कह रही है कि मैं अपने रूम की एसी बंद करके आपका शो सुन रही हूँ, क्योंकि एसी चलता रहेगा तो मुझे नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी तो फिर आपका शो कैसे सुनूंगी। शो के बाद फिर से ऑन करके सो जाऊंगी। हाँ ये अच्छा काम है वैसे आप जो करते हैं कि मेरे शो सुनने के बाद आप सो जा रहे हैं। और इरम कहती है सिर जानी, हाँ मुगल कहते मेरे को खास वीआईपी शो है आपका, मैं शौक से सुनता हूँ। ईद मुबारक सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुनव्वर मुगल की जानिब से, और आपको भी ईद की बहुत सारी मुबारकबाद हो। वैसे आप शो सुनते हैं, पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं तो आपको दिल से वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जा रहा है। और ये हमारे साथ में जिसकी फरमाइश हमें नूर से, ईद उल अज़हा मुबारक हो आपको, बेला परी क्या सीमा आपको मुबारक और वेलकम। हमको तो जीने की भी उम्मीद बात है। अच्छा ये कहते हैं बाजी, आपने हिसाब लगाया आपकी ईदी कितनी हुई है? बाजी मुझे भी ईदी मिली है और मेरी ईदी 12,500 हुई है। लाड़कना से इमरान अली बिरोई भाई, अच्छा हाँ मैंने हिसाब लगाया था, तकरीबन मेरी ईदी जो ना वो 15 से शायद 16,000 बन रही थी, अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी रहती है लेकिन ये इतनी बनी है।

को पंध पियो तो कराए बाबा अच्छा मुनव्वर मुगल भात आज मोहबतूं आहिनि मोहबतूं बाबा ये है सिदरा अच्छा मीरपुर खास से दली लाशारी भामे से भा इन गाल में को शक नाए गुलनास बाजी जेका है वो तमाम सुठी आर्जे आए असा तो खैर ये रायो आई मां तो यो सोची दी नाया मखे पाण के अगर मां हिकड़ो डठो वने ना मां अगर पांजो प्रोग्राम बुधनी आए तो मां पाण सोची दी आए तो मतलब मां करे करे ये थिंदो माइक ती अची करे मां कुछ गालाए वेंदी आए आई जे जो बाद में मखे रियलाइज थिंदो तो शायद मखे नो गालाणो पर थिंदो आ मतलब इंसान अगर एड़े मूड में हुंदो आ मां तवा सा गड हुंदी आ तवा जो मैसेजेस हुंदा आ तवा जो गाली हुंदा आ तो पो मां तवा सा चिल मूड में मतलब थी वेनी आ चिल हुंदी आ पर डठो वने तो हुं काफी सीरियस अगर पांच प्रोग्राम बुधनी तो मुझे पान से खिल ईन्दी है तो यह हकीकत है लेकिन अगर तवे वो मुझे प्रोग्राम तवे सुठो लगन है तो ये तवजो मोहबतू आन बाबा बाकी मां न सोची एडी का महान आया या मां सुलमू जड़ो को भी कोने को न बाबा सब मुखा मथे आन सब मुखा सुठो कम कंदा मां तो जूनियर आया सभी मां नंढड़ी नंढड़ी मां दिसण में भी नंढड़ी आया सभी का नंढड़ी आया तो मुझे यहाँ सोच हूँ बाकी हाँ मुखा वधिक खोड़ सारा आर्जे आन जेके सफा सुठो कम कंदा आन हू बेस्ट आन बिल्कुल इन गाल में को शक ना पर अगर मु इहा शे भी नोटिस कई है काफी सारा मुखे भी साल थिया इन इदारे में कम कंदे त कुछ एड़ा मानू हुंदा आइन जेके सोचिंदा आइन त बाबा बेन के तमा अगर ता का कोई नंडो आ सीनियर तमा आयो त तमा जी वडी अख होजन गुरजे तमा उनन के अगर एप्रिशिएट नथा गए त तमा उनन ते जको न तंस वगैरह भी न कयो सो वडो अगर वडो मानू जको न जी वडी नजर होजन गुरजे मुजी या सोच हुंदी आ अगर मुखा को नंडो हुंदो त मा उनके एप्रिशिएट कंदम त अगलो इंसान जको न वो खुश थी करे न सुठो कम करे पर अगर वडो ही चवंदो त न ही त थोड़ो मतलब ही थिंदो तो यार वडे मानू जी तो वडी अख होजन घुर्जे असो हर को पांजे हिसाब से सही कम करी पयो मां मतलब ता दिसंदा हुंदा मां इते वेही करे के जो भी शायद जिक्र न कनी आ प्रोग्राम

0: छो त मूंखे लॻंदो आहे त न करणु घुर्जे।
1: सॼी दुनिया खे ख़बर आहे त दिल खॿे पासे ते थींदो,
0: पर मूं पाण बि ॿुधो आहे हिक ॿ चकर त मुंहिंजे बारे में कंहिं चयो ईअं, मूं पाण ॿुधो आहे। पर अलहमदिल्ला माण्हू जो सपोर्ट आहे, माण्हू जी मोहबत हूंदी आहे, जंहिंजी वजह सां मूंखे लॻंदो त हा बाबा असां बि कुझु आहियूं शायदि। अच्छा साइमा मीर, हाँ कहती है तुम्हें पता है 6 साल पहले आज के दिन, आज का ही वो दिन था, मेरी पहली ईद थी तुम्हारे साथ, आज भी याद है बहुत ही। मैं मौज मस्ती के साथ गांव में तुम्हारा शो सुनती थी, आज भी आपका प्यारा आवाज, आपका प्यारा अंदाज, आपकी मीठी आवाज आज भी लाजवाब है। मौला आपको खुश रखे, सेहत याब करे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमामीन। थैंक यू सो मच साइमा मीर, वैसे वाकई काफी टाइम से आप मेरी लिसनर हैं और काफी टाइम से आप इसी मोहब्बत चाह के साथ मेरे साथ मौजूद हैं। और साइमा मीर कहती ओए प्यारी ये तो बताओ, मैंने बता दिया। इरम कहती दिलबर आप ही आज पहली बार, मेरी सिस्टर भाभी ने फरमाइश की है तो गाना लाजमी लगाएगा, हम इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश भी लिस्ट में मौजूद है, आप बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। अच्छा मकसूद मना कह रही है आप जा रही है सदरा मत जाए ना भाई, मेरे को जाना पड़ेगा। स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो भाई है सदरा, सची बुदायो। हा भा मिड़ई मिक्स आ, मतलब किथे सिंधी किथे उर्दू। कम वाले पे हलायो से। अच्छा सोनी ठीक आ, तव्हां खैर सां वञो बाबा, इंजॉय कयो पंहिंजी ईद। उन खां अलावा जी फकीर राहिब माशूक मेमण है, मिठल मेमण आसिम मेमण मुनीर मुनीर मोलाई बहरिया सिटी कोट बहादुर सॉन्ग सुणा पंहिंजी अखियुनि खे झले तूं। इहो गानो वरी इनशाला तव्हांखे ॿिए प्रोग्राम ॿुधाईंदासीं, त अॼु प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे न उहो बि ख़तम थियण वारो आहे ऐं तव्हां थोरो लेट सां आया प्रोग्राम में। हे मैसेजेस मुंहिंजे प्रोग्राम में मतिलब मूंखे थोरो चरियो करे छॾींदा। अञा ताईं पैनल ते मैसेज हलंदा, कॉमेंट्स जी तरफ़ त मां आई कोन आहियां। अंसर अंसर अली भाई बि हमारे साथ सिदरा मोलाई प्ले कर, पैसो ॾिठो थी चरियो थी वियो आहे। मोलाई जो गानो बिल्कुल हलाईंदासीं पर अॼु मता न हली सघे, सो नेक्स्ट प्रोग्राम में हलाईंदासीं। और फिर दोस्त भाई कहते भाजी, अच्छा ये आपका मैसेज था, सही से नाम लिखा करी अपना भाई। और विलेज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो भाई हमारे साथ, वेलकम जी। प्यार अली भाई कहते बाजी, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अंसर अली कहते बाजी पहले अलाए छा चयो, मकसूद कहते नहीं नहीं सच्ची बोल रही हूँ, अल्लाह सच्ची दी जवाब। और गुलाम शबीर तनु भाई फ्रॉम कंबर, अस्सलाम वालेकुम आपी, गुड आफ्टरनून एंड ईद मुबारक, शो इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।

कहोगे जी सुनील भाई हमारे साथ मौजूद है, शायद आप हमें इंडिया से सुन रहे हैं, आपने हिंदी में मैसेज कर दिया है, सो ये तो मुझे शायद हिंदी सीखनी पड़ेगी तभी मैं आपका मैसेज पढ़ सकूंगी। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है सुनील, आपको वेलकम करते हैं। अच्छा आशिक अली चांडू भाई हैं, कहते मैडम एफबी के एसएमएस पढ़ोगी आप? हाँ जी बिल्कुल पढ़ते हैं सब, पढ़ते हैं सब सब। और उसके अलावा धरती दिल कहते मैंने, अच्छा सच्ची बताए। अच्छा आदल आपका भी बहुत शुक्रिया, इतने सारे आपने कमेंट कर दिए हैं। अमानुल्लाह टंगड़ भाई हमारे साथ है नौशरो फिरोज से, आप शो सुन रहे हैं, शो उम्दा है आपका, ईद मुबारक हो, आपको भी ईद मुबारक हो कहते हैं। मैंने तो बोला था रिजवान साहब को कि आप टाइम निकालकर आइएगा मेरे प्रोग्राम में, लेकिन उन्होंने बोला कि आज मुझे काफी जो है ना वो काम है तो मैं आज नहीं आ सकता, इसी वजह से वो आज नहीं आ सके। लेकिन ये एक मैं ही हूँ कि उनको कहती हूँ कि भाई आ जाएं आप मेरे प्रोग्राम में, लिसनर्स आपको याद करते हैं, तो वो जो है ना वो बस ईद पर आते हैं शायद मेरे साथ। मैंने उनको कई मरतबा बोला कि हम एक डुएट शो करें, लेकिन वो नहीं मानते। अच्छा हजार खान भाभी से सगन मौजूदा, हजार खान बात आज मोहब्बत हूँ, इमरान खान रुख से सगन मौजूदा है, इमरान बात आवाज भी

किशोर भाई चए थी अदी इन गर्मी वारे हा बिल्कुल मां आहियां पर इहो कमु कमु हूंदो आहे न मां तॾहिं त तव्हांखे चवां थी हूंदो कहिड़ो जेको ॾींहं तते में तव्हांजे ॾींहं तते में अचे ऐं वरी प्रोग्राम करे

बिल्कुल जी बिल्कुल, तव्हां वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो पिया तॾहिं तव्हां सोणा थी विया आहियो। अगरि तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया त मूंखे ॿुधाईंदा हलो, किथे किथे अवेलेबल न आहे त तव्हां अवेलेबल करायो। हुन सां गॾोगॾु डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बि तव्हांजे एरिया में हुजणु ज़रूरी आहे। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स बि तव्हां लॻायो जीअं तव्हां अञा वधीक सोणा थी वञो, समुझो था। सो मर्द मायूं सभु लॻाए सघनि था, ऑल स्किन टाइप जे लाइ आहे, नेचुरल अज़ा सां तयारु थियल आहे। बबल लॻायो जीअं सोणा थी वञो, सफ़ सफ़ सोणा। उन खां अलावा जेको आहे न, सो ॿिए लाइ कहिड़ी ॻाल्हि पई कयां तव्हां सां, अच्छा पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो अगरि अञा ताईं तव्हां नाहे कयो।

अच्छा चाचा खालिद कहते हाँ अवहां जो शो ऑस्ट्रेलिया इंडिया में भी हले पयो चंदा इो थई लेडी जो कमाल यस चेरी चेरी लेडी लेडी जो है ना पावरफुल होजन घुर्जे लेडी जो है ना वह स्ट्रांग होजन घुर्जे उन अलावा जो है ना लास्ट ट्रेक मु लगाए अथम किशोर भाई कहते अदी अमां वट लाइट वने तो नेटवर्क वेंदो आ इयो इशू ना इलाही टाइम का हली पयो लाइट वई नेटवर्क वयो हलियो मां सोचा पर गोसा वटा पर लगो वाले सबनी वट इयो कम आ फोजिया सुमरो जे गाने जी फरमाइश मुझे प्रोग्राम में इलाही सारा लिसनर करना है सो फोजिया सुमरो जो ही वारो ट्रैक मु लिस्ट में लगायो आ है जेको अस सब मिली कर एंजॉय करना सी।

सो तमाम बि सोणा सोणा थियो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो सोमो क्राणी नाहे बाबू सिंह सलामत सा सलामत अल हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इस्तेहकाम जलाकुर अज़म आहे पाकिस्तान जी दिफाई स्ट्रेटजिक सलाहियत मुकदस कौमी अमानत आहे।

अमेरिका हिकु भेरो ॿीहर जंगबंदी जी भञकड़ी कंदे ईरान मथां हवाई हमला करे छॾिया। आबनाए हरमुज़ भरिसां फ़ौजी ठाकनि खे निशानो बणाइण जी दावा। ईरान पारां बे जवाबी वार ख़िते में मौजूद हिकु अमेरिकी फ़ौजीअ खे निशानो बणाइण जी दावा। अमेरिकी हंधि चवणा आहे त हमलनि जो मक़सदु कम करणो इंकलाब जे चवण सां बमबारी जे जवाब में अमेरिकी बणायो वियो तां ईरान ते हमिलो कयो वियो हो। रूसी खाबी उदारे मौजूदु ईरान तेल सां भरियल अमेरिकी जहाज़ जी आबनाए हरमुज़ सां गुज़रण जी कोशिश बि नाकाम बणाए छॾी आहे।

ट्रम्प जे दबाव में न ईंदासीं। अपना आर्मूं जो कंट्रोल ईरान वठी रहंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी जो ट्रम्प जी धमकीअ ते रद्द अमल। सदस्य वारा ईरान खे यूरेनियम बचाइण जो हक़ हासिल आहे। पाबंदियुनि में नरमी जो मुतालबो जाइज़ आहे। ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे नायब सेक्रेटरी अली बाकरी जो चवणु आहे त यूरेनियम ज़खीरनि जो मामिलो अमेरिका सां हलंदड़ ॻाल्हि में शामिल नाहे। आबिरा हरमुस खोलण बाबति अञा ताईं अमेरिका सां इतफ़ाक़ नाहे थियो।

नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त कोशिश कयूं पिया त बजट में अवाम ते घटि खां घटि हुकूमत महांगाई में घटाई जे लाइ मुसलसल कदम खणी रही आहे। सियासी जमातूं सिर्फ़ तनक़ीद बदिरां मुआशी इस्तेहकाम जे लाइ कम कनि। कवालिया में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त आलमी सतह ते पाकिस्तान जूं सफ़ारती कोशिशूं साराहियूं पियूं वञनि। ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी सां कणिक जी पैदावार में एक्सपोर्ट में बि वाधा थी सघे थी। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मीना में सऊदी अरब मंत्री सऊद सां मुलाकात ॿिन्ही घरूं जूं वाधायूं ॾिनियूं। पाक सऊदी अरब तरफ़ां लाॻापियल अंदरूनी सिक्योरिटी ते ख़्यालनि जी ॾे वठि बि कई वई। वधाए मुजिबि एफ़ सी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन जा 200 अहलकार सऊदीअ में कतान घटाइण में सिंध में 3 ज़ख़्मी। कोॾी जी फर्ज़ा कांधड़ो में कांधड़ा बिरादरी जी विंदर में जहिड़ो संदसि वालिद अर्ज़ मोहम्मद समेत कई ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। शहदादपुर में लंजवाणी बिरादरी जी बिंदरनि में जहिड़े दौरान हिकु ॼणो दोस्त लंजवाणी कतल।

0: ॾींहुं वेठा था, दुआऊं घुरूं सॼो ॾींहुं वेठा था, सलातूं पढ़ूं सॼो ॾींहुं वेठा था, ज़िकिर कयूं, मन को अल्लाह ताला पंहिंजो को मौजिज़ो अता फरमाए। बाक़ी हिन इंतिज़ामिया मूं असां मजबूत थी पिया आहियूं, का समुझ में ॻाल्हि नथी अचे, को सुराग कोन थो मिले, चवनि था त असांखे का शइ कोन थी मिले।
1: शहरनि जो ईद जे ॿिए ॾींहुं बि धरनो 45 ॾींहं अॻु अचनि निंगरी उजाला परवीन जी बाज़ाबी जे लाइ वारसनि शहरनि जो घंटा घर चौक वटि धरनो। ॿुधाइनि चयो त निंगरी जी बाज़ाबी जे लाइ जोड़े GIT बि को नतीजो न ॾिनो आहे, निंगरीअ खे फौरी बाज़ाब कराए वञे। हैदराबाद सीता रोड मां पुलिस अहलकार समेत ॿिनि ॼणनि जा लाश थिए हैदराबाद मां

0: ऐं बंग्लादेशी हुकूमत डोनाल्ड ट्रम्प जे नाले पाड़े खे ज़बह थियण खां बचाए वरितो। बंग्लादेशी हुकूमत जी मुदाख़लत सां डोनाल्ड ट्रम्प नाले पाड़े जी क़ुर्बानी रुकजी वई। बंग्लादेशी घर वधारण जे अहदेदार ॿुधायो त डोनाल्ड ट्रम्प नाले पाड़े में गैर मामूली दिलचस्पी वधण बाद सिक्योरिटी ख़र्चनि खे ॾिसंदे पाड़ो ज़बह करण खां रोकरायो। गढ़वधी सलाहुद्दीन अहमद हुकुम ॾिनो त 700 किलो वज़नी पाड़े खे क़ुर्बानी खां बचायो वञे, ख़रीदार खे पैसा वापसि कया वञनि ऐं जानवर खे ढाका जे क़ौमी चिड़ियाघर मुंतक़िल कयो वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में तेज़ ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैन साथ ज़िंदगी भर का।
2: गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को।
3: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
4: बॉडी रहे कंफर्टेबल, माइंड रहे फ्रेश, आपकी डेली आउटपुट डबल फॉर अ बेटर पाकिस्तान। पाकिस्तान।
5: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
6: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
7: शदीद गर्मीअ सबबि शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।
8: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती, धब्बे और बेजानपन। अब सबको कहे अलविदा। निखार, बाजगी, टीचअप आई, पूरी रंग। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगने। अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल ऐप से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
9: अदा कयां, 2 सालनि खां अमर पथरीन जे मर्ज़ में मुब्तला आहे। डॉक्टर ऑपरेशन जो चवनि था, गरी फीस जो ॿुधी हर दफ़े मायूस थी मोटी ईंदो आहियां।
10: भाऊ मायूस, मां तोखे अलाह वारनि इंसान जो मुमताज़ वेलफेयर खोलियो आहे, जंहिं में मरीज़नि जी चकास ऐं ऑपरेशन मुफ़्त में कनि था।
9: जी हाँ, बा अख़लाक, बा किरदार, इंसान दोस्त, आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अली अब्बासी ऐं संदसि घरवारी डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी MBBS, FCPS, यूरोलॉजी जी डिग्री। हिते गुर्दे मसान ऐं रुकावट, बेओलादी ऐं गुदूद जो ऑपरेशन जदीद औज़ारनि ऐं मशीनुनि सां ऐं लेज़र ज़रिए इंडोस्कोपिक ऐं ओपन ऑपरेशन कयो वञे थो। यादि रखंदा, रोज़ानो चकासीअ में कयो वञी वेंदी। बस असलनि दवाउनि ऐं कमरे जी फीस मरीज़ पाण ॾींदा। साजिद अब्बासी ऐं डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी, वेहण जो हंधु मुमताज़ वेलफेयर क्लिनिक, अलनिसा मेडिकल सेंटर, सिटी चौक जो 4:30 ताईं। आचर ते सुबुह जो 12 बजे खां शाम जो 4 बजे ताईं। राब्ते जे लाइ 4118 69।

0: चारिन जो बिज रहे मुकाबले में कप्तान हाइब्रिड बिज से मिले जजी पैदावार वो बूढ़ो
1: साई चेबो तो इन साल भी मुझा सोना कंगन पक्का
0: वेझे कप्तान फ्रेंचाइज ता हासिल करो
1: राबते ऐं मालूमात जे लाइ
0: RSM लाड़काणो
1: सजाद हुसैन बुघियो मोबाइल नंबर 03121344205।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर लाड़काणे में दिलदार अखियुनि जी क्लिनिक जो बाक़ायदा आगाज कयो वियो आहे। डॉक्टर सफदर अली अब्बासी अखियुनि जे बीमारनि जो माहिर ऐं फेको सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर चाणका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो। हिते अखियुनि जी बीमारियुनि रेटिना यानी अखियुनि जो पर्दो ऐं ग्लूकोमा यानी कारो पाणी मोतियो पाणी ऐं इन खां सवाइ शुगर ऐं ब्लड प्रेशर जे करे पैदा थींदड़ अखियुनि जे पर्दे जी बीमारियुनि जो पिण इलाज कयो वञे थो। डॉक्टर सफदर अली अब्बासी एड्रेस नज प्रिंस मेडिकल स्टोर शेख जैद अस्पताल रोड लाड़काणो। टाइम रोजाना शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं ऐं आचर ते सुबुह जो 9 बजे खां मंझंदि जो 2 बजे ताईं।
0: राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 03163566286। खुशखबरी लाड़काणे जी पहिरीं लेडी डॉक्टर हाइड्रा फेशियल ऐं चमड़ीअ जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर इरम जूणे जो MBBS RMP डिप्लोमा इन डर्माटोलॉजी कंसल्टेंट कॉस्मेटिक डर्माटोलॉजिस्ट स्किन कॉम्प्लेक्स चाणका मेडिकल कॉलेज ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो। हिते कुंवार जे चेहरे जी खूबसूरती वधाइण लाइ ब्राइडल बीबी ग्लो मशीन ज़रिए कयो वञे थो। अॼु जे जदीद दौर में हाइड्रा फेशियल मशीन सां कयो वञे थो। क्रीमुनि जो मिक्सचर मशीन पाण ठाहे थी ऐं मशीन चेहरे जे अंदर लिकल शयुनि खे छिके बाहर कढे थी। गंजपन यानी मथे जे वारन छणण जो इलाज PRP ऐं इंजेक्शन सां कयो वञे थो। चेहरे ऐं जिस्म चेहरे ते छाउनि जो इलाज पी थो। एलर्जी दाणनि जो इलाज लैश मिनियासिस इंजेक्शन सां कयो वञे थो। यादि रखंदा औरतुनि जे चेहरे जे गैर ज़रूरी वारनि जो इलाज लेज़र थेरेपी ज़रिए कयो वञे थो। डॉक्टर इरम जूणे जो हाइड्रा फेशियल ऐं चमड़ीअ जे बीमारियुनि जी माहिर। यादि रखंदा जुमे जे ॾींहुं 1 बजे खां 3 बजे ताईं औरतुनि ऐं नंढड़नि ॿारनि जी चकास ऐं दवाऊं मुफ़्त में ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि। टाइम रोज़ानो शाम जो 5 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां मंझंदि जो 3 बजे ताईं। एड्रेस इंडस हॉस्पिटल लेडीज़ जे राबते जे लाइ 03-3157।
2: ख़ुशख़बरी हाणे अवां जी परेश माहिर डॉक्टर शेख ख़ालिद मोहम्मद अफ्ता MBBS MRCP लंडन एल्टन फिज़िशियन चाणका मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाड़काणो। टाइटस ABCDE जलंधर या कारो कामुन शुगर हाई ब्लड प्रेशर मथे चेल ऐं जोड़नि जो सूर रगुन जो सूर TB दम ऐं ॿियूं फिफड़नि ऐं गुर्दनि जूं बीमारियूं। क्लिनिक कराची मेडिकल एंड 3 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं आज जो 4 बजे जे लाइ 0905। अपॉइंटमेंट जे लाइ मोहम्मद रफीक सरगाणी मोबाइल नंबर 03320317311।
3: अनीसा ख़ैर त आहे मंडकाए थो घुमी धकु लॻो अथई छा?
4: हा ग़रीबी हाल किथां करायां
3: भाऊ? में दीप कुमार सूफ़ी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफ़ां ऑपरेशन मुफ़्त करे थो ऐं जल्दी डॉक्टर प्रदीप और माहिर सर सिविल हॉस्पिटल।

जर्मनी, फ्रांस, कनाडा से जौहरी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए अहम कदम उठाए। हसास तरीन आलात खरीदना और उनको पाकिस्तान मंगाया था। पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए यूरोप, मशीकी वस्ता, सिंगापुर और भारत में ISI के खास तरबियत याफ्ता एजेंटों का एक जाल बिछा दिया गया, जो हसास आलात मुख्तलिफ मुल्कों से खरीदते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के रास्ते मुंतकिल कर देते हैं। अमरीका को जब इस बात का इल्म हुआ पाकिस्तान पर गामजन है, तो अमरीका ने फ्रांस, जर्मनी, कैनेडा पर पाबंदी आयद कर दी करे, जो पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम में पेशरफ्त का बायस बने। लेकिन जर्मनी ने अमरीकी पाबंदी के बावजूद ट्रेशियम टेक्नोलॉजी फ्राम की जो जदीद जौहरी में बम में इस्तेमाल होती है, इस बात का इंकशाफ पाकिस्तान के साबका सफाकरतकार जमशेद मार्कर लिखते हैं कि पाकिस्तान को यूरेनियम अफसूदगी का मैार पर रखने वाला आला से फरोख करने वाले को इस मकसद के लिए सिंगापुर बना रखी थी। पाकिस्तान को अपना एटमी प्रोग्राम दुनिया के सामने लाए बगैर पाया तकमील तक थी सारे प्रोग्राम को तबाह और बर्बाद। सारे प्रोसेस में पाकिस्तानी हाकिम जियाउल हक के लिए सबसे बड़ा मसला एल्युमिनियम परत के अमरीका ने एल्युमिनियम की थी, जबकि दूसरा बड़ा मसला एल्युमिनियम परत के पाइप खरीदने के लिए सिंगापुर के रास्ते पाकिस्तान कैसे लाए जाए। एल्युमिनियम परत के पाइप पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तानी जहाजों का भारत में फ्यूल डलवाने के लिए बाहर ठहरना लाजमी था, जबकि पाकिस्तानी हुकाम इस बात का रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि हसास तरीन आलात भारत के हाथ न लग जाएं, जिसके बाद भारत सबूतों के साथ दुनिया में वावेला मचाना शुरू कर देता। यह इंतहाई संगीन तरीन मसला था, सिंगापुर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, बजायर एक नामुमकिन तरीन मिशन था। आपने अपनी सबसे खुफिया हसास तरीन चीज अपने सबसे बड़े दुश्मन की नजरों के सामने से लेकर जानी थी। जरा सा शक भी सारे प्लान को दफन कर सकता था, मगर इस मुश्किल तरीन मिशन का बेड़ा भी ISI के सरपरे मार्कोरो ने उठाया हुआ था। ISI के मार्कोरो ने इस बात को यकीन दिलाया वह हसास आलात भारत की नजर पर भी पड़ने नहीं देंगे। इस मकसद के लिए ISI के स्पेशल कमांड को पहले भारत सिंगापुर के एयरपोर्ट किया गया, फिर समाज भारत के एयरपोर्ट पर उतरे, कई घंटे इंतजार के बाद तब तेल डलवाया गया और ये पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, इस सारे मामले में बेखबर रहा। पाकिस्तान उसके एयरपोर्ट को न्यूक्लियर सामान की मुंतकली के लिए इस्तेमाल कर चुका था। यह दुनिया की नजर में नामुमकिन तरीन मिशन था, इन्हें मुमकिन कर दिखाया। और जब एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो मुल्क की अगर जहां बात आती है, तो ये सारी की सारी जो आपसे मैंने ये हिस्ट्री शेयर की है, सही है ना? तो जनाब योम इसको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, हमें फख्र है हम पाकिस्तानी हैं। और ये हमारे लिए सेलिब्रेशन का इवेंट है, बहुत ही जो है तगो दो के बाद हम इस जो है अहम मकाम पर पहुंचे। आज पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ अव्वल में है, हमारी फोर्सेस जो हैं उनकी मिसाल दुनिया में किसी भी कंट्री की फोर्सेस से उन्हें हम कंपेयर नहीं कर सकते। हमें फख्र है हम पाकिस्तानी हैं। और आई विश मेरी और मेरे तमाम सुनने वालों की, हमारी इंतजामिया की, बल्कि हर पाकिस्तान के दिल की यही आवाज होगी कि रहती दुनिया तक हमारा

0: के हो तो आवाज भी सिंक।
1: तो सुबह 11 बजे खां शाम 4 बजे तई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वणो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। बारन, बुजुर्गन बीमार माण्हुनि जो खास ख्याल रखो। वधीक पाणी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन सां पेश कयो वियो।
2: आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एक्स।

0: ब्यूटी एलोवेरा स्किन को फिट बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा निखार साथ बॉडी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, आ प्रोडक्ट ऑफ लिल पाकिस्तान।
1: मोहम्मद उमर बुक हॉस्पिटल जिते माहिर एं तजुर्बेकार ऑपरेशन थिएटर, अल्ट्रासाउंड, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर्स, सर्जिकल एं मेडिकल सहूलतूं, मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस, इंसानियत की खिदमत असां जो मकसद। एड्रेस मोहम्मद उमर बुगियो ट्रस्ट हॉस्पिटल, मीरवा रोड वेझो, डिस्ट्रिक्ट जेल, डिफेंस सिटी, मीरपुर खास। वधीक मालूमात लाइ 03413424।
2: आपके शहर में डॉक्टर मोहम्मद खान पहोड़ पहर 1 बजे ओपीडी करते हैं।

अक्षर पसंद देखिए 8 अक्टूबर से हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।

0: नहीं लगती है दादी जी, कुछ
1: चले आज तो लग गई है,
0: कल अभी जाकर काल न कोई लगे।
1: चले क्या कहेंगे सब सुनने वालों से?
0: हम यही कहेंगे तय कहेंगे सर ये टीन से जिंदा थे तो बाबा पारे वाला जो ख्याल को आए हर एक मेरे पारे वाला ने भेज दी जो माना गो सजो पानी फिर क्यों भरे न रख जो
1: भाई आ जाए वो कोई फायदा ना।
0: पास दादी कुछ भाई भी है
1: जी
0: जलाल
1: चांदी गॉड जलाल चांदी ईद के दिन वो तो सती है उसका तो गाना ही ऐसा इतना जाएगा कोई और अच्छा
0: मेरा भाई है सही रमन जतोई
1: जी
0: आओ आया रमन जतोई है या जतोई जो भी सुन रहा है बस अब्दुल भाई तो जतोई सभी सत्ता के सलाम
1: सबनी बारा वालेकुम असलाम थैंक यू सो मच। और ईद के मौके पे प्लीज ऐसी फरमाइशें किया करें ना जो दो तीन मिनट का गाना जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। माजद के साथ जलाल अंकल के सॉन्ग्स ना बहुत लंबे हैं 15-19 मिनट के हैं, उसमें तो ब्रेक भी हमारे पे जाएगा। हैला ये क्या हो गया नेक्स्ट एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जनाब वेलकम कहेंगे कौन बात कर रहा है? वेलकम कहेंगे आपको जनाब ईद मुबारक आपको।
2: ईद मुबारक आपको ईद मुबारक
1: थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे सब सुनने वालों से ईद के इस मौके पे?

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: ट्रंप के दबाव में रहंदासीं, आपला हर मुल्क जो कंट्रोल ईरान वटि रहंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी जो ट्रंप जी धमकीअ ते रद अमल, सदस्य वाले ईरान के यूरेनियम बचाव जो हक़ हासिल आहे, पाबंदियुनि में नरमी जो मुतालबो जाइज़ आहे। ईरानी क़ौमी सलामती काउंसिल जे लाइ सेक्रेटरी अली बाकरी जो चवण आहे त यूरेनियम ज़खीरनि जो मामिलो अमेरिका सां हलंदड़ ॻाल्हियुनि में शामिल न आहे। आबिया हरमोज़ खोलण बाबति अञा ताईं अमेरिका सां इतफ़ाक़ न आहे थियो।

नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे कोशिश कयूं पिया त बजट में आवाम ते घटि खां घटि भार विझूं। हुकूमत महांगाई में घटाई जे लाइ मुसलसल कदम खणी रही आहे। सियासी जमात सिर्फ़ तनक़ीद बदिरां मुआशी इस्तेहकाम जे लाइ कम कनि। कवालिया में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त आलमी सतह ते पाकिस्तान जूं सफ़ारती कोशिशूं सारायूं पियूं वञनि। ज़रई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी सां कणक जी पैदावार में वाधि मुमकिन आहे। एक्सपोर्ट में बि वाधि थी सघे थी। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मिना में सऊदी मनसब अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद सां मुलाक़ात। ॿिन्ही घर वज़ीरनि हिक ॿिए खे ईद जूं वाधायूं ॾिनियूं। गॾियल पधराई मूजिब अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद घर वज़ीर मोहसिन नक़वी खे हज जूं वाधायूं ॾिनियूं। पाक सऊदी अरब तरफ़ लाॻापन ऐं अंदरूनी सिक्योरिटी ते ख़्यालनि जी डेबट बि कई वई। पधराई मूजिब एफ़ सी स्पेशल डिप्लोमेट प्रोटेक्शन जा 200 अहलकार सऊदीअ में तरबियत हासिल कंदा। सऊदी वज़ीर पारां छिकतान घटाइण में पाकिस्तान जे हाकारी किरदार जी साराह।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। चार माण्हुनि जो खाओ, वधीक पाणी पियो ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही मते सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।

0: GFM Network. ही आहे सिंध जी दिल जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: और राना ताहिर भाई भी हमारे साथ हैं। वेलकम कहेंगे भाई आपको, अदा ईद मुबारक। और फैमिली भी साथ में, भाभी को बनो ढेर बेस्ट विशेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सेम टू यू। ईद उल अजहा आपको भी मुबारक। सब लिसनर्स को ईद उल अजहा मुबारक ताहिर भाई की जानिब से। अल्लाह पाक का शुक्र है ईद हुई, इसमें कोई शर्मी को सलाम। ईद मैं ये कहती हूँ, मौजूद हो जो हमारे नसीब में नहीं होगा ना, वो हाथ से आके भी निकल जाएगा, और जो नसीब में होगा ना, वो जाकर भी वापस आ जाएगा। ऐसे ही है। और मैं अपने तमाम सामईन को बताती चलूं, अगर प्रोग्राम में कॉल के थ्रू आपने जो है अपने होने का एहसास दिलाना है, तो आपने डायल करना है 03136615688। मैंने सोचा ईद के प्रोग्राम में जो है हम कोई भी सेगमेंट फिलहाल शामिल नहीं करते, मोस्टली मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मेरे हाल प्रोग्राम्स में जो है ना डेली बेसिस पे सेगमेंट वाइज प्रोग्राम करती हूँ। तो आज के जो प्रोग्राम है इनमें ईद वाले जो शोज है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉल। चलिए जी, आपकी कॉल की जानिब करते हैं मूव। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, वेलकम कहेंगे। कौन बात कर रहा है?
1: मैं लियाकत अली मुबारक।
0: सेम टू यू लियाकत भाई, बहुत शुक्रिया। तमाम सखर वालों को ईद मुबारक। आप बताइए क्या हाल है आपकी, आप ठीक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं।
0: क्या कहेंगे इस मौके पर सब सुनने वालों से, कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगे आप? चलिए जी, आपकी तो कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गई है। खैर जनाब, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, वेलकम कहेंगे। कौन बात कर रहा है? आवाज कुछ कुछ जानी पहचानी है। प्लीज अभी नहीं, अभी कसौटी गेम नहीं खेलते। आप बताएं, वैसे मुझे पता है आप मेरी रेगुलर लिस्नर है, नाम आप बता दें। कोई मसला नहीं है मोहतरमा, आपको ईद मुबारक।
2: अच्छा शुक्र, आपने ये तो बोला कि मैं मुहतरमा तो कौन बात कर रहा है।
0: अच्छा स्वीट गर्ल, आपको ईद मुबारक। ये ठीक है,
2: नहीं मतलब लड़की मैं आपको कौन बात कर रहा है?
0: नहीं तो आप पूछती हूँ ना मैं, पता चले ना भाई अली भाई हैं या पप्पू भाई हैं या गुड़िया बहन है। डीके, हाँ जी, देखो हमारी रेग्यूलर। तो फिर बस जनाब, रात गई बात गई। और बताएं क्या हाल है, कैसी गुजर रही है आपकी?
2: दोनों दिन आप लोगों के साथ।
0: अच्छी बात है, हमारे साथ तो सूखी ईद गुजरनी है। हमने कौन सा आपको तिक्के खिलाने हैं ईद पे, हम तो बातें ही करके अपने घर जाएंगे। आपने कुकिंग की ईद की कोई, ये बताए? क्या मसला है? मैं तो मतलब आरजे तो है काम चोर, क्या मुझे लिसनर भी वखरे फीमेल लिसनर मिले जो काम ही नहीं करते, अक्सा भी काम नहीं करती है। अब आप भी कह रही है मैं काम नहीं करती, शाबाश हो आपको।
2: पता नहीं क्या मसला है हमारे साथ,
0: ये आपके साथ ही मसला होगा, बहरहाल मेरे साथ नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग बहुत जबरदस्त आती है, लेकिन करती नहीं हूँ। ये मेरी फैमिली जो है ना, ये बड़े मुझे लाड से उन्होंने रखा हुआ है, वो कोई भी काम नहीं करवाते मुझसे। ये अच्छी बात है,
2: मेरी फैमिली बात है, आपकी समझ सब कुछ है बनाना, लेकिन मैं करती
0: हूँ। चलें, गुड हो गया ये। तो क्या कहेंगे सब सुनने वालों से? और ये वक्फा गोश्त खाने का ना हद से 3-4 मिनट होना चाहिए, आधा घंटा नहीं होना चाहिए, ये भी कह दें। गोश्त जो खाने का जो आपका टाइम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3-4 मिनट होना चाहिए, आधा घंटा नहीं होना चाहिए।
2: मैं
0: चलें, एहतियात करें, एहतियात बेहतर होती है, परहेज ज्यादा इलाज होता है। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे। डीके बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, और जनाब जब भी कोई मतलब किसी तकरीब में जाते हैं या कोई इवेंट होता है ना, तो हमारा पूरा जोर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा खाना खाने पे होता है। ऐसा ही है ना, फिर तबीयत खराब हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इतनी सारी परेशानी से बेहतर है बहुत थोड़ा सा खाएं, मतलब इतना खाएं जितना आप लोगों के मैदे पे गरा ना गुजरे, फिर आप बीमार ना हो, हेल्दी रहें, खुश रहें, और ईद को जो है वो एंजॉय करें। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम,
0: वेलकम कहेंगे। अदा कौन बात कर रहा है?
3: अफगर मंगरो, गुड नवा मंगरो
0: है, भली कर जाऊँ था अदा तुम्हारा।

0: Okay, kera hala in tamaja?
1: Kuch ho kera mandwa.
0: Ada Eid Mubarak, alhamdulillah, main bilkul theek hoon. Sabko Eid Mubarak bol de, humne break pe jana hai. चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका. आपकी जानिब से सबको ईद मुबारकें हम कह देते हैं. और जनाब, ब्रेक का टाइम है तो ब्रेक पे जाते हैं. ब्रेक के बाद आपकी कॉल शाम में प्रोग्राम करेंगे.

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: या है सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा मियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं
2: सिंध की होत

किससे मेरी उल्फत के जो मरकूम है सारे, किससे मेरे उल्फत के जो मरकूम है सारे, आधिक तेरे नाम से मौसूम है सारे, बस इसलिए हर काम अधूरा ही पड़ा है, खादिम भी मेरी कौम के मखदूम है सारे, अब कौन मेरे पांव की जंजीर को खोले, हाकिम मेरी बस्ती के भी महकूम है सारे, शायद ये ज़र्फ़ है जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, हर जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है, हर जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है, क्या मेरे सिवा शहर में सब मासूम है सारे, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा, न जाने कब तेरे दिल पे नई सी दस्तक हो, मकान खाली हुआ है कोई तो आएगा, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आया भी तो किस रास्ते से आएगा, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। वंस अगेन वेलकम करेंगे अपने तमाम सामेइन को जीएमई प्रकाश एफएम 88 के लाइव स्टूडियो से, प्रोग्राम आने है नमकीन ईद की तीखी खुशियां, आठ जना प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में एमपी के लिखना है, एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर। आपके एसएमएसेज शामिल प्रोग्राम करेंगे, लाइव कॉल के लिए आप डायल कर सकते हैं 03133616। आज जी प्यार अली कहते हैं

0: अच्छा जी, फाइव फिगर्स आर नॉट इक्वल लिमिट। ओके, बहुत शुक्रिया आपका अदा प्यारा लिए आप शामिल प्रोग्राम हुए, थैंक यू सो मच, आपको ईद की ढेरों ढेर बेस्ट विशेस। और जनाब, जैसे मंजिल पे पहुंचने की जल्दी होती है ना, वो राह में जो पड़े हुए पत्थर होते हैं उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपनी मंजिल की जानिब चलता है। अदा प्यार अली, आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप मंजिल पे पहुंचने चाहते हैं तो रास्ते में पड़े हुए जो पत्थर हैं उन्हें नजरअंदाज करके अपनी मंजिल की जानिब अपना सफर जारी रखें। मेरी तरह अक्सर कहती है गुल, माहौल तो वही है कुर्बानी वाला, नहीं गोश्त नहीं चाहिए, बस इतना देख देख कर दिल भर गया है, अभी तो ईदी दो ना, ईद का मजा दोबाला हो जाए। हैला अक्सा ये इन्ने सारे लिसनर्स हैं, सारे के सारे अगर ईदी का मुझे कहें, आप तो कई सालों से कह रही हैं, देखिए मुझ पे चारा ने असर नहीं हो रहा आपके इतने सालों से कहने वाले जो ईद की बात है, फिर सारे लिसनर कहेंगे सानू भी चाहिए साढ़ा हक ऐसे रख, फिर मैं गरीब आरजे क्या करूंगी, ये बताए मुझे। या हजारों की तादाद में लिसनर थे, अच्छा कुछ थोड़ा सा मेरा ख्याल करो प्लीज ये बात यही दबाओ ईदी वाली गुल, मैं भी अच्छी कुकिंग कर सकती हूँ, आप कर सकती हो, मैं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे हाथ का घर वाले खाए ना गुल तो कसम से मैं इतना नहीं खाती, जस्ट एक बिरयानी और मैक्रोनी है जो तीन चार बार खा लेती हूँ बस, और जब भी बनती है, और बाकी कोई चीज बने ना तो मैं पहले ही बोल देती हूँ चावल बना लेते ना, या फिर कुछ ये क्या बना लिया, ये हर घर में एक ऐसा बंदा या बंदी होती है जिसने ये वाली चावल जरूर बनानी होती है अक्सर और हमारे घर में मैं बचपन में बहुत सिलेक्टेड फूड खाया करती थी। अच्छा, फिर मेरी वालदा मोहतरमा का ये कहना है, वो सबको ये कहती है कि ये जो मेरी बड़ी बेटी है इसके खाने पीने की आदतें इतनी खराब थी, इसके लिए हमें बहुत कुछ बनाना पड़ता था, बाकी के बच्चों को जो है मैंने ये वाली आदतें डलने ही नहीं दी, मेरे बाकी के सारे बच्चे सब कुछ खाते हैं। तो अक्सर मैंने नसीहत कराई भी थी घर वालों को, जबकि अब मैं ये कहती हूँ कि हमें सब कुछ खाना चाहिए, सब रब की नेमतें हैं, और अब मजे की बात यह है कि मैं सब कुछ खा लेती हूँ, अब मेरे नखरे खाने पीने में बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं सोशल मीडिया पे और दीगर वेबसाइट्स पे खाने की चीजों के मुतालिक सर्च करती हूँ और ये जो है मेरी मालूमात में इजाफा होता है कि इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो अब मैंने जो है ना खाने पीने में नखरे करना बिल्कुल छोड़ दिए। आपसे भी ये कहूंगी, रब की नेमतें हैं, तमाम तर नेमतों को जो है ना आपने अपनी जो है फूड में ऐड करना है, अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। गुड मोहम्मद तैयब थेबो से हबीबुल्ला थेबो, आपका शो वेरी नाइस है, आपको आपकी एफएम की ऑल टीम ऑल लिसनर्स को ईद मुबारक, अदा सेम टू यू, थैंक यू। और जनाब यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, तो जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं अगेन, ईद मुबारक।
1: बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GMIRPOCAST FM 88 नेटवर्क ते
2: फ्रॉम GMIRPOCAST FM 88।

0: अच्छा जी, अजीज जरवार ईद मुबारक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा आपका, थैंक यू सो मच। आप शामली प्रोग्राम हुए, आपको भी दिली ईद मुबारक। और आपको कितनी ईदी मिली है सच सच बताना असमा, सच बोलू सच्ची में। बहुत ही पर्सनल बात है अक्सा, ये पर्सनल चीज है, प्लीज जो है पर्सनल लाइफ और जो है प्रोफेशनल लाइफ चेंज होती है, ठीक है। और जनाब एक कुछ कॉल्स ले लेते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, वेलकम कहेंगे आपको, क्या हाल है आपके?
1: अल्लाह का शुक्र, आपके दूसरे दिन के लिए मुबारक हो आपको।
0: सेम टू यू, थैंक यू। और कैसा गुजरा आपका आज का दिन?
1: आज का अच्छा गुजरने वाला है, आप सब बहनें इकट्ठी होंगी माशाल्लाह।
0: अरे वाह, क्या आपने कुकिंग वगैरह कुछ की है बहनों के लिए या बस बातों पे ही टाल देंगी उन्हें?
1: अभी मेरे तो नहीं करनी कुकिंग वगैरह, मतलब बनवाएंगे, मतलब मैंने आपकी उनकी फैमिली मतलब पूरी पूरी शामिल होंगी माशाल्लाह।
0: जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरकरार रखे आप सबका।
1: घर में भी बनाएंगे, बनवाएंगे
0: भी खाना। चले अच्छे से एंजॉय कीजिएगा यास्मीन, बहुत शुक्रिया आप शामिल प्रोग्राम में।
1: मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम और
0: हमेशा। सेम टू यू, थैंक यू सबकी जानिब से, वालेकुम अस्सलाम। ओके, और जनाब मैं कोशिश करूंगी कि अब आपके कुछ SMS हैं वो ले लें, क्योंकि कॉल्स का सिलसिला में जो है वो जो है फिलहाल नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी। ओके, नहीं जी, नहीं नहीं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने ईदी भी तकसीम की है और वसूल भी है। थैंक यू सो मच असमा, आप दुआएं भेजती है, नाम लिखा करो ना चंदा, आप मुझे पता ही नहीं चलता ये कौन दुआएं दे रहा है मुझे। असमा सेम टू यू, मैं बहुत अच्छी, आप बताओ आप कैसी हो। और ओ माय गॉड, मैंने आपका मैसेज बहुत लेट देखा है जिसमें आपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। अगर नेक्स्ट प्रोग्राम किया मैंने, जिंदगी ने दिया मौका, तो मैं उस दिन आप मुझसे फरमाइश कीजिएगा, मैं जो है आपको सॉन्ग सुना दूंगी। और अभी जो है कुछ टाइम है, क्या ख्याल है कुछ कॉल्स ले लें।

0: चलिए जी कुछ कॉल्स ले लेते हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ माय गॉड, चलिए आप मुझे रेडियो पे सुन लें। अगर आपको इतना शौक है तो चुपचाप होके रेडियो पे सुन लें, ठीक है। कॉल आपकी मैंने कट कर दी। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। जनाब रेडियो ऑफ कर दें प्लीज।
1: आप पहले चैटर सुन रहा हूँ लारकाना पे। आप सुनाए कैसे हो?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ आप कैसे हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ईद मुबारक। दूसरा दिन आज आपकी अमीर आएगा, कल इंतजार नहीं करो।
0: रात में इंशाल्लाह अजीज, मेरा जहाँ तक ख्याल है आपका फेवरेट आरजे आएगा 8 बजे की टाइमिंग में।
1: आरजे अमीर में मुश्किला, आरजे अमीर फिर आएगा।
0: अब ये मुझे इतना पक्का पता नहीं है, इतना कंफर्म नहीं है। आप 8 बजे रेडियो ट्यून कर लेना, जो भी आएगा उसे सुन लेना, ठीक है? अच्छी बात है, आरजे की जानिब से थैंक यू। आरजे ने अगर जो ज्वाइन किया तो फिर रात को आप उन्हें कॉल कीजिएगा, ठीक है? असम की तपिश, खुदा न खास्ता आपको बीमार ना कर दे। हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्दी रहने के लिए अपनी केयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जनाब वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है?
2: अभी बच्चों
0: भली घर जाऊँ था दादा, तव्हांखे ईद मुबारक। थैंक यू दादा, सबको ईद मुबारक कह दें। अल्लाह हाफिज कहना है फिर मुझे आपको। ठीक है दादा, महरबानी तव्हां जी, तव्हां असांखे ज्वाइन कयो। थैंक यू सभिनी पारां, महरबानी तव्हां जी। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम प्यारी बेना।
0: वेलकम कहेंगे दादा, क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं?
2: बस आपकी दुआ देने की होती है तो अली हसन भाई ठीक ठाक होता है।
0: अली हसन भाई, अली हसन भाई ये बताइए, आपने भाभियों को ईदी दी है या नहीं?
2: सारों को दिए, सारे फैमिली को, बच्चों को, सारों को देता हूँ मैं ईदी प्यारी बिना।
0: चलो अच्छी बात है, क्या कहेंगे सब सुनने वालों से?
2: बस सुनने वालों को यही कहूँगा प्यारी बिना, जो कुर्बानी कर रहे हैं तो जो कुर्बानी कर रहे हैं उसको कहेंगे। सारों को नहीं, सारे तो कहते भी नहीं, को गरीब है को कैसे है, पर जो कुर्बानी करते हैं तो उसको मैं यही कहूँगा। गोश्त नहीं दे रहे हैं, बस जो करते हैं कुर्बानी तो बस कर्जे भर के आप रखते हैं वो।
0: ये कुर्बानी कबूल नहीं होती है, ये हमारी अपने लिए कुर्बानी होती है जो हम अपनी मतलब के लिए करते हैं।
2: बस करते जो ऐसे प्यारे बिना, आज मेरे गांव में तकरीबन 3 हो गई है तो हमारे पास नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने उसको कहा ये कुर्बानी है भी नहीं, तो सारों को थोड़ा थोड़ा दे तो वो होती है कुर्बानी। ये आपकी चलो खुशामद है।
0: बिल्कुल ये तो है, अल्लाह हिदायत दे सबको, और रब को जो है लोगों की नियतों से गर्ज है, रब जो है नियतों से जो है कबूल करता है।
2: कहते मैं भी यही कह रहा हूँ, सारे जो सुन रहे हैं आप, जो भी तो कुर्बानी गरीबों में छोटे छोटे बूटी है कि भी वो कुर्बानी होगी।
0: बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा, शामले प्रोग्राम हुए, प्रोग्राम का खत्म होने का वक्त है। थैंक यू सो मच।
2: बस
0: सेम टू यू अदा, थैंक यू, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आपका भी। और आप से ये भी गुजारिश है, सॉरी टू से ये मैंने पर्सनली एक चीज नोट की है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपने किसी को गोश्त देना होता है इतना दिया करें कि उसके घर में जो है वो कुछ पका के खा लें। अच्छा होता यह है कि 2 से 3 अदद हड्डियां होती हैं, 2-3 बोटियां होती हैं, 3-4 चर्बियां होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ ये भी हिस्सा है उस जानवर का जिसे आपने ज़िबा किया है, लेकिन गोश्त भी दिया करें। ये इस टाइप की जो है फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात होती है, ठीक है? हमारा दिल करता है हम हर वक्त आपको सुनते रहें, आप अपने दिल को समझाएं, दिल पागल है और बच्चा भी है और दिल की नहीं सुननी चाहिए हरगिज़, ठीक है? अच्छा आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं अस्मा लगारी। ओके अस्मा, थैंक यू, आप खुद बहुत अच्छी हैं और जो खुद अच्छा होता है उसे सामने वाला भी अच्छा लगता है। थैंक यू चंदा, बहुत शुक्रिया और बंडल ऑफ थैंक्स। और माजरत कहूँ उन लोगों की जिनकी कॉल्स नहीं लग पाई, आपसे बहुत बहुत माजरत मेरी तरफ से, आप सबको दिल की गहराइयों से दिल ही ईद मुबारक। और ईद को मुबारक अगर करना है तो इंसाफ कीजिए, अगर आप लोगों ने कुर्बानी की है तो कुर्बानी के गोश्त की सही तकसीम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम आरजी गुलनाज आईएम फहाद अली लशारी, ईद उल अज़हा मुबारक हो आप कॉल लिसनर को। सलाम यास्मीन अक्सान मोलक्सा माहीन सना और सरदर्द नूर फातिमा, चलिए सबकी जानिब से आपको भी दिली ईद मुबारक फहाद, थैंक यू सो मच। और अस्सलाम वालेकुम आरजे गुलनाज, बहुत खुशी हुई आज आपका शो सुन के। फहाद अली लाशारी, पढ़ाई में बिजी रहता हूँ, ये तो बहुत जबरदस्त बात है, इसी वजह से शो में नहीं आता आपके। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, आई एम गुड। देना ओके, मैं तो सोच रही हूँ ना ही करूँ, एक हफ्ते तक छुट्टी कर लूँ, आपने भी कह दिया तो चले मैं सोचती हूँ इस बारे में। लिसनर्स को तो मैं यकीन से कह सकती हूँ उनको गोश्त चाहिए। अगर आप पूछोगी, एक मैं ही हूँ जिससे आपसे ईदी लेनी है, हाँ अपने तौर पर फैसले कर लिए, अभी मैं लिसनर से पूछ भी नहीं सकती, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। लिसनर्स बताए ना, आपको गोश्त चाहिए ईदी चाहिए? मेरे 99 ईयर्स एज हो गई है, मैं जब तक नहीं, मेरी 99 ईयर्स एज होगी, मैं जब तक आपकी ईदी का वेट में हूँ। ओ माई गॉड, गुल आप पे है, फिर आप कब दो? आई एम वेटिंग गुल, माशाल्लाह आप हजारों साल जिए अक्सा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और पेवस्ता रहे शरीर से, उम्मीदें बारक, दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है ये अक्सा आपके लिए, थैंक यू। अक्सा कहती है मैंने पूछा कसम से कि आपको कितनी ईदी मिली है। गुल ईद पे ही ज्यादा दिल, ईदी पे ही ज्यादा दिल आता है अक्सर, दिल को संभालो, इधर उधर ना लुढ़कने दिया करो, बुरी बात होती है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं अक्सर, हाथ करो दिल को वापस चलो। और बाजी खान मरी से, हाजी मोहम्मद मरी, नंडड़ो फरहान अली मरी, अस्सलाम वालेकुम बाजी गुल, आपको ईद मुबारक। सलाम लिसनर्स को और सबकी जानिब से अदा मेहरबानी, तमा के भी ईद जो मुबारकू। चले जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अपनी अना को और अपने नफ्स को, अपनी जिद को और अपने दिल से हसद बुगस कीना और मुनाफकत को जो है वो कीजिए क्लियर। रबे कायनात हमेशा आप पर मेहरबान रहे इंशाल्लाह उल अजीज, जिंदगी ने दिया साथ, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में होनी है आपसे मुलाकात। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, वंस अगेन तमाम सुनने वालों को ईद उल अज़हा की तीखी नमकीन खुशियां मुबारक, अल्लाह हाफिज, हैव अ गुड इवनिंग।

0: अमेरिका एक भेरो बीहर जंगबंदी की भजकड़ी कंदे ईरान मथा हवाई हमला कर छिया आपना हुर्मुस भरसा फौजी ताकन के निशानों बनाने की दावा ईरान पारा भी जवाब खत्े में मौजूद एक अमरीकी फौजी अड्डे के निशानों बनाने की दावा अमरीकी अख्तियारों का चवण है हमलों का मकसद अमरीकी फौज ए अपना हुर्मुस व्यापारी जहाजन के लागू खतरा खत्म करण हो। ईरानी पासदारन इनकलाब का चवण है बंदर अब्बास भरसा बमबारी के जवाब में अमरीकी फौजी अड्डे के निशानों बनाए वो इन अड्डे तां ईरान से हमलों कयो वियो हो। रूसी खबरू इदारे मौजिब ईरान तेल से भरल अमरीकी जहाज अपनाए हुर्मुज का गुजरण की कोशिश भी नाकाम बनाए छी है। ट्रंप के दबाव में न ईदस आपदा हुर्मुज कंट्रोल ईरान वटी रहंदो ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी जो ट्रंप की धमकी से रद्द अमल संदस चवण है ईरान के यूरेनियम रिचार्ज का हासिल है पाबंदियों में नरमी जो मुतालबो जायज है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकर जो चवण है यूरेनियम जखीरन जो मामलो अमरीका से हलंदड़ गाल में शामिल न है आपदा हुर्मुज खोलण बाबत अं तई अमरीका से इतफाक न है थो। नाणे वारे वजीर मोहम्मद औरंगजेब है कोशिश क्यों पा बजट में अवाम से घट का घट बार विझू हुकूमत महंगाई में घटताई लाए मुसलसिल कदम खड़ी रही है सियासी जमायतू सिर्फ तनकीद बदरा मुआशी इस्तेकाम लाए कम कन कमालिया में मीडिया से गालाइंदे मोहम्मद औरंगजेब आलमी सतह से पाकिस्तान जो सिफारती कोशिश सारा पे वन सरे शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से कड़क की पैदावार में वाद मुमकिन है एक्सपोर्ट में भी वाद थी रही है।
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नई का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: नकाब देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क,
2: GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: आपदा परवीन जो इंशाल्लाह ताला मां प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश करूं आपदा परवीन जो भी सुपर हिट सॉन्ग जी जी ठीक है थैंक यू मेहरापुर का मुझे प्यारा दोस्त तमा पांजो खास ख्याल रखो गर्मी का बचो आई असा के बदंदा रहो जी जनाब मेहरापुर से हमारे साथ है बहुत प्यारे से कॉलर खुर्शीद भाई और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जहां कहीं पर भी हैं जनाब आपकी समाथों से अगर हमारी आवाज चकरा रही है तो आप हमें कॉल कीजिए 03000113488 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शामिल शो हो सकते हैं हम चलाते हैं जनाब शो का पहला गाना हमारे साथ मौजूद है बच्चा लोग बच्चा पार्टी और लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर कौन है अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी मुझे लगता है ताहिर लुंड हमारे साथ मौजूद है
1: हाफिज सावल
0: ढिलू पे गलाया हाफिज सावल ढिलू साहब कॉल किया था मुखे
1: अदा मोरो खां पे गलाया
0: मोरो वारा पुजी वियाने खेर सा मोरो वारा प्यारा प्यारा मानू छा कंदा आयो हाफिज साहब
1: अदा कुरान शरीफ पढ़ाइंदो आया नमाज पढ़रो आया
0: माशाल्लाह असन जे लिए दुआ कंदा आयो दुआ घुरंदा आयो मुझे लिए
1: जी जी
0: हां हमेशा दुआ में याद रखंदा कयो यार आमीन आमीन यो बुधायो तो ताजी ईद जो बियो नी किए तो गुजरे
1: बेहतरीन बेहतरीन गुजरे असल बेस्ट गुजरे
0: हां दावतू शावतू खादियो थव या कयो थव या सिर्फ खादियो थव दोस्तन दी दावतू कयो थव हेलो हाफिज साहब हेलो
1: हेलो
0: जी जी हाफिज साहब आवाज अचे थी मुझे
1: जी जी अचे पी
0: हाफिज साहब मुख्य यो बुधायो दावतू तमा खादियो इन या दावतू कंहिंखे इनवाइट भी कयो आहे
1: इनवाइट भी कयो आहे दोस्तन खे अच्छा
0: जबरदस्त यार जबरदस्त तमा ना खोर सारी दावतू तां खादियो जी जी
1: मुख्य कलाम बुधायो
0: फरजाना परवीन जो
1: हा कलाम बुधो
0: केड़ो हा बुधायो बुधायो
1: मुझे हथ जो रुमाल दे देखे न दे जाए मुझे हथ जो रुमाल दे देखे न दे जाए मुझे प्यारो जाए
0: मुझे हथ जो रुमाल बेहो कंहिंखे न ॾिजाए हाफिज साहब जबरदस्त हाफिज साहब तव्हां घणा सुरीला बि आयो तमामु घणा जी जी जी हुकुम हाज़िर हाज़िर वालेकुम अस्सलाम पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो हाफिज़ साहब थैंक यू हमारे साथ जनाब इस वक्त हैं हाफिज साहब और उनकी फरमाइश भी पूरी करेंगे हमारे साथ फेसबुक के थ्रू है इजाज़ अहमद जुनेजो अस्सलाम वालेकुम डियर वालेकुम अस्सलाम इजाज भाई कैसे हैं ठीक ठाक और शफीक भट्टी हमारे साथ हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को ईद मुबारक सऊदीया से शफीक भट्टी साहब सऊदीया वालों को भी ईद का आई थिंक थर्ड डे होगा उनका या सेकेंड डे है तो सबको जनाब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो और आप परदेश में हैं परदेशियों को सबको ईद मुबारक अगेन इजाज़ अहमद जुनेजो कहते हैं नारो स्टॉप नज सब्जी मंडी सखर से मुनीब रहमान और मुजीब रहमान जुनेजो भी आपको सुन रहे हैं थैंक यू सो मच इजाज़ अहमद जुनेजो साहब आप भी सुन रहे हैं मुनीब रहमान भी सुन रहे हैं और मुजीब रहमान भी सुन रहे हैं हमारा शो आपका बहुत शुक्रिया अलाबख्श शाकरानी इज वॉचिंग थैंक यू अलाबख्श शाकरानी साहब इजाज़ कहते हैं क्या हाल इनियाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआएं हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब हम आपके लिए शो लेकर आए हैं जबरदस्त सा जो कि आप सुन रहे हैं ईद के पहले दिन भी आपने सुना ईद की धूम ईद के सेकंड डे भी आप सुन रहे हैं ईद की धूम और जनाब ईद के थर्ड डे भी आप सुनेंगे फ्राइडे के रोज ईद की धूम क्योंकि हम तीनों दिन आपके साथ मौजूद हैं मुजम्मिल हुसैन सोलंगी कहते हैं सलाम भाईजान ईद मुबारक ईद मुबारक टू यू टू मुजम्मिल हुसैन सोलंगी भाई आपका बहुत शुक्रिया हम हमें याद कर रहे हैं लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम
0: सलाम साईं
2: केर असां सभिनी सां ख़ुशि आहियो
0: अलहमदुल्ला भाइरनि जी दुआऊं आहिनि मूंखे तव्हां केर अदा
2: मां साईं हबीब हथड़ी
0: खां हबीब हथड़ीअ खां
2: जी जी साईं
0: ओके हबीब भाउ छा कंदा आहियो ऐं ईद जी खोड़ सारियूं मुबारकूं
2: साईं तव्हांखे बि मुबारकूं
0: थैंक यू ईद जा ॾिहाड़ा कीअं गुज़रिया तव्हांजा
2: साईं भला गुज़रिया सफ़ा
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माना खाधो पीतो हले थो घुमण फिरण बि हले थो जबरदस्त जबरदस्त हबीब साहब इहो ॿुधायो गानो ॿुधाइण वारो आहे कंहिंखे डेडिकेट कंदव
2: मुंहिंजा भाउर जमील सोलंकी जमील सोलंकी
0: जी
2: मोहम्मद रफ़ीक सोलंकी गुलाम मेहर सोलंकी
0: अच्छा
2: ज़मीर अहमद सोलंकी
0: ज़मीर अहमद सोलंकी ठीक ठीक ठीक ठीक ईद जे ॾींहुं एंजॉय कयो ऐं गर्मी खां बचो हबीब थैंक यू सो मच थैंक यू हमारे साथ ही जनाब हबीब भाई और हबीब भाई के बाद अब देखते हैं लाइन पर कौन है आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जनाब गर्मी से बचे क्योंकि

0: खतरा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है और ये गर्मी लग सकती है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि एहतियात ज्यादा बेहतर है। अल्लाह बख्श अकरानी कहते हैं, इश्फाक भाई कैसे हो, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच अल्लाह बख्श अकरानी। वालेकुम अस्सलाम, एंड आपको भी बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम।
0: केरदा सा सबनी सा गदो गद। अली मोहम्मद
1: अलीवान
0: से
1: जी। अब्दुल कदीर कुरैशी।
0: अब्दुल कदीर कुरैशी साहब, लगता है गोश्त वो ज्यादा खा लिया आपने, आपके गले पर खराश आ गई है।
1: बस
0: अच्छा कुरैशी साहब, आपको ईद मुबारक को पहले तो
1: खैर मुबारक।
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक ठाक। आप ही बताइए कि आपका ईद के दिन कैसे गुजरा, दूसरा दिन है आज।
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा जबरदस्त, दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी है, कहीं पे दावत शावत खाने गए या घर पे ही सिर्फ खा रहे हैं अभी तक?
1: बस घर पे ही।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। ये बताइए कि आप किसी को डेडिकेशन करना चाहेंगे? मैं भी गाना चलाने जा रहा हूँ, जालिम नजरों से तुम ना देखो हाय मर जाऊंगा।
1: बिल्कुल अल्लाह आपको खुश रखे।
0: जी जी।
1: डेडिकेट तो किसको करेंगे, शायद हमारा कोई दोस्त हो।
0: अच्छा मुझे ही कर दें।
1: उसी के नाम।
0: अच्छा आपका कोई खुफिया दोस्त है?
1: कोई भी है जो जानता है हमारे को, शायद सुन रहा है।
0: अच्छा सब सुन रहे हैं, उनको डेडिकेट कर रहे हैं आप?
1: हाँ उनको डेडिकेट कर रहा हूँ, उनको भी।
0: जी जी जी जी। अलीवान से आप हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छे तरीके से और भी ईद को गुजारिए, हमारे साथ रहिए और गर्मी से खुद को बचाइए यार आप।
1: अल्लाह आपको खुशियां दे, गर्मी से अपने आप को बचाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ कुरैशी साहब थे जनाब, बहुत प्यारे से अलीवान से, और जनाब इनको भी गाना सुनवाते हैं। लेकिन रिजवान अली टावरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अशफाक नियाजी साहब, मेरी तरफ से ईद उल अजहा दूसरा दिन आपको बहुत मुबारक हो। वफा इमरान के कजन हूं और अली हैदर टावरी का भाई हूं, नेम रिजवान अली टावरी। ओके जनाब रिजवान भाई, आपका आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमें देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत में जुनेजो कहते हैं, अशफाक भाई आज हमको सॉन्ग सुनाओ जाहिद मंगसी का। ओके जनाब आई विल ट्राई, मैं देखता हूं कि जाहिद मंगसी का कौन सा गाना आपको सुनवा। अब्दुल मलिक पठान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो हम आपके लिए प्ले करते हैं इस वक्त बहुत प्यारा सा गाना है। जबरदस्त से बच्चों की फरमाइश पर जनाब गाना है, जालिम नजर से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जारा खुशी सलार समेजो और कश्यप जारा के नाम है ये गाना, तो सुनिए और बहुत सारा एंजॉय कीजिए। अल्लाह बख्श चाकरानी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच।

0: खुशियों, कुर्बानी और मोहब्बत का त्यौहार जी एस एखर FM 88 की जानिब से ईद उल अजहा मुबारक। दुआ है कि ये ईद आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खील महासे और बेजान पन, अब सबको कहें अलविदा बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम। चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
2: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वती का आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर दी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार, ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: छात्रवां समर वेकेशंस के फ्रूटफुल बनाना चाहियो था? छात्रवां सिर्फ बिन महीनन में न्यू स्किल्स सीखी पंहिंजे मुस्तक़बिल के वधीक बेहतर बनाना चाहियो था? तोए परेशान थियण जी का जरूरत नाहे। ग्लेमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सखर पेश करे थो 2 मंथ्स समर वेकेशन स्पेशल कोर्सेज, जिनमें शामिल आहिन किड्स कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, 1 ईयर DIT कोर्स, 6 मंथ्स CIT कोर्स। तजुर्बेकार टीचर्स जी निगरानी में जदीद एंड आसान तरीकन सा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सा गड सिखिया। मुनासिब फीस में मयारी तालीम हासिल करियो एंड पहेंजी समर वेकेशंस के कामयाबी एंड सिखिया जो बेहतरीन मौकियो बनायो। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। एडमिशंस ओपन नाउ। व्हाट्सएप 0300-311-3830, मोबाइल 0300-09-31207 एंड 0301-386-5090। एड्रेस लार टावर, फर्स्ट फ्लोर, 100 फीट रोड, भरसा, IBA यूनिवर्सिटी, गेट नंबर 2, सखर। ग्लैमर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लर्न स्किल्स, बिल्ड योर फ्यूचर।
3: यार मछा क्या, किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थी।
4: छो भला साथ तुखे साफ साफ बुधा मसलो छाए।
3: यार एक मसलो हुजे त बुधाया, मुझे ते मसलन जी कतार लगल आहे, न भुख सही लगे थी, आई जे कुछ भी खावा थो त हजम ही न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वनन था, आई सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही नाया।
4: यार तुझा घणा न, बस एक ही मसलो आ।
3: एक इहो की है?
4: हाँ, तुझो मैदो खराब आ। छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त, जे मादो सही न होंदो त भुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो आई न ताकत मिलंदी।
3: तो पोइ मां छा कया?
4: सोलो हल आहे, इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स। ही कुदरती जुजन मां तैयार कयल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छॾींदो। भुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हजम थींदई, पेट फूकजण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
3: वाह यार, वाह जी गाल बुधाई थी, पर ही किथे मिलंदो?
4: इहो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं, अल नूर दवाखाना रोड़ी। आई राब्ते जे लाइ नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
5: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक NICVD रोड सखर हैदराबाद ए लाड़काने जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी DHMS RHMP इस्लामाबाद जोड़न संधन जो सूर कुंदरग जो सूर कंघे जो सूर हडन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश बारन में कद जो न वधण मोटापो इन अलावा पित्ते गुर्दे मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो टाइम सुबह 10 का शाम 6 वगे ताई एड्रेस सखर होम्योपैथिक क्लिनिक नज़्द दिलवारी अस्पताल सखर हर जुमे आचर ते चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त रश का बचण नंबर वठण लाए 0327-84-60-746।
6: ईद उल उज़ा मुबारक सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी मोहब्बत ईसार ए भाईचारे के अजीम पैगाम से भरियल ईद उल उज़ा के इन पुरमुसरत ए बरकतन वाले मौके थे जवार मोहम्मद बचल शंबाणी अब्दुल रसूल भुट्टो अयाज भुट्टो सुलेमान भुट्टो यामीन भुट्टो अली हसन भाबो अली गुल कटवर रजा मोहम्मद मस्तोई सैयद इमदाद अली शाह खान मोहम्मद महर मकसूद न्याजी अली मोहम्मद भमरो अला वराय उलाशारी समेत समूरे आलम इस्लाम ए पाकिस्तान की आवाम के दिल की गहराइन से ईद उल उज़ा जो लख लख वाधायूं नेक तमनाओं ए दुआओं पेश कजन थियूं पारा सोना खान मस्तोई जेक बाबात राबतो 0304-754-2138। खुशखबरी आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
7: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
6: DHMS सिंध
7: RHMP इस्लामाबाद
6: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना
7: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी
6: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज
7: कमर दर्द
6: अर्कुन निसा
7: जोड़ों का दर्द
6: हेपेटाइटिस
7: वजन की कमी या ज्यादती
6: बे औलादी
7: गंजपन का मुकम्मल इलाज
6: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान
7: टाइम
6: हफ्ते से जुमेरात
7: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक
6: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक
7: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर
6: राब्ते के लिए
7: 0326-22-00-440।
8: ईद कुर्बा का पैगाम है इसार मोहब्बत और भाईचारे का आपको और आपके अहले खाना को जी सखर FM 88 की जानिब से ईद उल अज़हा की बहुत सारी मुबारकबाद।
9: जी जनाब वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आपका अपना अशफाक आफ्टर द ब्रेक आ चुका है आपके साथ 5:38 टाइम इज राइट नाउ और गर्मी बदस्तूर वैसी की वैसी छोड़ के गए थे और गर्मी ने कम होना नहीं है जनाब। गर्मी लगता है कि अपने सारा गुस्सा सारी हम आवाम पे निकाल रही है तो कोई बात नहीं जनाब, हम भी इस गर्मा गर्मी से बचने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि अपना कर इस गर्मा गर्मी से बच सकते हैं। सबसे बड़ा तरीका जो है वो अपने घर पे रहिए, घर वालों के साथ रहिए, बाहर ना निकलें जब तक कि आपको कोई जरूरी काम ना हो। जब तक कोई भी आपको काम ना हो तब तक आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहेंगे। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम अस्सलाम।
9: कौन हमारे साथ? ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। तमा बिल्कुल ठीक ठाक, तमा केर किथां पिया ॻाल्हायो?
10: सर मां हाफिज लखमीर गिलू मोरो खां।
9: हाफिज लखमीर साहब कहिड़ा हाल चाल आहिनि? ठीक ठाक। ऐं मोरो वारा सभु कीअं आहिनि?
10: अलहमदुल्ला मोरो वारा बि ठीक ठाक आहिनि। मुंहिंजी दिलि ते वई थी हिकिड़ी मां तव्हांखे नात शरीफ़
9: ॿुधायां। बिस्मिल्लाह। ज़रूर ज़रूर ज़रूर।
10: सैतन बगन दे दो आहे ने अञा
9: सुभान अल्लाह।

0: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जबरदस्त तव्हांजी आवाज़ तमामु घणी प्यारी आहे तव्हां असांखे नाज़ शरीफ़ ॿुधाई आहे इहो ॿुधायो मोरो वारनि जी ईद कीअं थी गुज़रे कंहिंजो
1: अॼु ॿुधाइजो त जेको आहे सो शायदि मास्टर मंज़ूर जी आवाज़ में कलाम आहे
0: जी जी
1: विछड़ी वियल बे दर्द खे खारे थी दिलि मूंखे ॾींहुं राति रुआरे थी ऐं ख़ुदा हिन दिलि जे बदिले ॿी दिलि ॾे
0: अच्छा विछड़ी वियल जी यादि रुआरे थी
1: जी विछड़ी वियल विछड़ी वियल बे दर्द खे खारे थी
0: वाह वाह वाह
1: दिल मूंखे
0: अच्छा
1: असांजा दोस्त आहे
0: जी जी
1: साईं इमदाद शाह बुखारी साहब आरती गुलाब खान बैंड साहब सर मंसूर साहब ऐं जवान मोहन बचल शमानी साहब हाफिज़ सावन ढिलू साहब हाफिज़ ज्ञान मोहम्मद अब्दुल साहब जवान मोहन बचल शमानी साहब या जेके ॿुधंदा
0: जी जी जी बस ये तव्हांजो कलाम हींअर मां लगाए छॾियो आहे थोरी देर बाद प्ले थो कयां अदा थैंक यू सो मच मोर वारा भाउ हाफिज़ अब्दुल करीम साहब आई थिंक थैंक यू सो मच तव्हां असांखे कॉल कई जनाब तव्हां जी फरमाइश असां बिल्कुल प्ले कंदासीं थोरी देर में वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी अदा ईद मुबारक केरु असां सभिनी सां गॾु
2: सर आबाद ग्रुप खां सैयद इमदाद शाह बुखारी
0: आबाद ग्रुप खां सैयद दिलदार शाह बुखारी
2: सैयद इमदाद शाह बुखारी
0: सैयद इमदाद शाह बुखारी साहब तव्हांखे खोड़ सारी ईद जी मुबारकूं जनदा
2: साईं तव्हांखे बि खोड़ सारी ईद जी मुबारकूं ऐं असां त ईद माशाल्लाह सेलिब्रेट सुठे नमूने सां कई आहे
0: ज़बरदस्त ज़बरदस्त मां घर में वेही करे सेलिब्रेट कई आहे मां दोस्तनि वटि बि कोन वियो आहियां हिकु दोस्त वटि बि कोन वियो आहियां अच्छा गर्मी इलाही पई आहे ऐं मां तव्हां ॾिसो त क़यामत लॻी पई आहे सिर्फ़
2: मां क़यामत लॻी पई आहे
0: वाकई ऐं मां सिर्फ़ प्रोग्राम करण लाइ घरां हिते ईंदो आहियां वरी हितां सिधो भॼी वेंदो आहियां घर
2: कयो न
0: जी
2: इहो फिल्मनि में शूटिंग हुजे शूटिंग करण पखो मथां जॾहिं चाहूं था
0: बसि दुआ कयो त तव्हांजे भाई खे एतिरी शोहरत मिली वञे एॾा पैसा अची वञे त मां पखो साण करे घुमां माना हिकिड़ो माण्हू रखां पंहिंजे मथां हा अञा असांजी तंखा कोन आई आहे असां हुनखे बि तंखा ॾियूं ख़ैर हिन में थैंक यू सो मच तव्हां मुंहिंजे करे एतिरो सोचियो आहे तव्हां मूंखे मुफ़ीद मशवरो ॾिनो आहे इनशाला ताला ज़रूर कंदासीं ईअं अच्छा इहो ॿुधायो त जेको तव्हां मां हाणे गानो थो प्ले कयां मास्टर मंज़ूर जो कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो जी जी कहिड़ो गानो हे दिलि तोखे ॾेई छॾी इहो गुनगुनाए ॿुधायो मूंखे थोरो गुनगुनाए ॿुधायो एॾो सुरीलो आहे एॾो सुरीलो आहे मूंखे मां तव्हांखे छा ॿुधायां थोरो गुनगुनाए ॿुधायो वाह वाह वाह वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त सिंह जला तव्हांखे ॿुधाइण जी पूरी कोशिशि था कयूं कंहिंजे नाले था करणु चाहियो
2: हिन वक़्तु कालर हाफ़िज़ लक्ष्मी दिलू साहब साहब जवाहर मोहन साहब ऐं असांजो प्यारो दोस्त आहे कामरान महेश प्रोग्राम
0: जी जी इनशाला इनशाला ठीक आहे थैंक यू अदा पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखजो
2: अला हाफ़िज़
0: थैंक यू हमारे साथ बहुत प्यारे से कॉलर और जनाब बड़े अच्छे से मशवरे देते कि कोई बंदा रख ले और आपके ऊपर पंखा चलता रहे और आपके ऊपर पंखा चलाता रहे जितना शूटिंग में होता है तो जनाब थैंक यू सो मच आप हमें इतना मतलब हमारा इतना ख्याल कर रहे हैं और हमें मशवरे दे रहे हैं और गर्मी है आप भी अपना ख्याल रखें रिजवान अहमद कहते हैं सर सॉन्ग तो नहीं सुनाया शमन मेरा अली कारी जनाब सुना लेंगे इतनी जल्दी का एक दो घंटे हम आपके साथ हैं ले दें शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम दिलोरी का खालिक लाचारी
0: खालिक भाई ईद जो भी तांके खोड सारो मुबारक हुए
3: साहब के मुबारक
0: थैंक यू सो मच खालिक भाई क्या तो गुजरे तुम ईद जो
3: अलहमदुल्ला माशाल्लाह घुमंदे फिरंदे शहर में गोश्त खाईंदे मिठाइयूं खाईंदे माना इंजॉय इंजॉय
0: माना इंजॉय इंजॉय अकेला अकेला इंजॉय तो न मिठाई था खारायो न वरी गोश्त था खारायो छो भला आई एम जस्ट किडिंग यार मजाक थो कयां अल्लाह ताला तव्हांखे बख़्शे तव्हांखे नसीब करे तव्हां ईअं घुमंदा फिरंदा रहो खालिक भाउ फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास खालिक भाउ मूंखे इहो त ॿुधायो गर्मी कॾहिं घटि थींदी
3: जी
0: असांजी गर्मी अॼु कुझु घटि आहे मां अॼु कुझु हवा लॻी आहे अलाह एॾो एॾो एॾो गर्मी पई आहे हवा हले थी पर सफ़ा गर्मी तू दुआ कयो अला साईं खां त बादल अचनि, कोई बारिश थिए जी। खालिक भाउ गानो थो ॿुधायां, मास्टर मंज़ूर जो कंहिंजे नाले था करणु चाहियो?
3: साईं अज़ीज़ सोलंकी आहे, अज़ीज़ जलवार आहे, कुर्बान अली खासकेली आहे, अली रज़ा लिगारी आहे, यार मोहम्मद सोलंकी आहे।
0: ओके जनाब, मां हींअर बस ब्रेक आहे, ब्रेक जे बाद गानो थो प्ले कयां, ठीकु आहे दादा? थैंक यू खालिक भाउ, थैंक यू। खालिक भाई फ्रॉम झल्लूरी, और झल्लूरी के बाद हम लेते हैं शो की एक और कॉल। बिल्कुल टाइम वाम हो जाएगा तो चला के आते हैं आपके साथ और फिर आपकी कॉल लेते हैं, तो आप हमारे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए इस कमर्शियल ब्रेक को।
4: कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, जज्बात और ख्वाहिशात की भी होती है। ईद उल अजहा का पैगाम है खुलूस और कुर्बत का। जी सखर FM 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक। खुशखबरी, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन्स यूनिवर्सिटी सखर में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताईं वधाई वई आहे। जी हाँ, साल 2026 जे लाइ दाखिलाऊं जारी आहिनि मुख़्तलिफ़ शोबनि में। BS मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, BS कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फिजिक्स, रियाजी एंड शुमारियात जहिड़ा अहम प्रोग्राम्स, ह्यूमन एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS केमिस्ट्री, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, BEd 4 साला, MS एजुकेशन 2 साला। मुस्तहक शागिर्दियाण लाइ स्कॉलरशिप भी मौजूद। एलिजिबिलिटी एंड डेडलाइन, घट में घट 50% मार्कू इंटरमीडिएट लाजमी। उमिर जी हद 35 साल। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 5 जून 2026 ताईं वधाई वई आहे, लिहाजा देर न करियो, ऑनलाइन अप्लाई करियो। www.apy.bnbwu.edu.pk। गर्मी, थकावट या दिल की बेचैनी महसूस कयो पिया? हाने परेशान थियण की जरूरत ना है। पेश आहे शरबत रूहे राहत, कुदरती जड़ी बूटे मां तैयार कयल अहड़ो शरबत जेको तवां के दे ताजगी, सुकून एं हकीकी राहत। दिल की धड़कन के मुतवाजन रखण, गर्मी के असर के घटाएं, ऐं जिस्म के तवानी देण लाइ शरबत रूहे राहत। रोजानो सिर्फ 1 गिलास ऐं महसूस करियो थकावट खां आज़ादी। कीमत सिर्फ 450 रुपया। शरबत रूहे राहत मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखानो, रजिस्टर्ड फेज मोहम्मद रोड, गोश्त बाजार, गरीबाबाद, सखर। खमीस ऐं जुमो मिलण जो हंध मदनी तिबी दवाखाना, मसान रोड, नर्स लाला शहजादा चौक, रोहड़ी। राबतो 0302-36-26-176। ईद उल उज़ा जे हिन बरकतिन भरे खुशियुनि सां महकंदड़ ऐं रूहानी अहमियत वारे पुरमसरत मौके ते नज़ीर खोसो पारां समूरनि मुसलमान भाइरनि ऐं भेनरुनि खे दिल जी गहराइयुनि सां ईद उल उज़ा जूं लख लख वाधायूं, नेक तमनाऊं ऐं दुआऊं पेश कजनि थियूं। अला पाक खां दुआ आहे त हीअ ईद अव्हां जी ज़िंदगीअ में अमन, खु़शहाली, सिहत ऐं बेशुमार खु़शियूं आणे। पारां नज़ीर खोसो, बलोचिस्तान। राबते लाइ 0343-830-2796। अहांजे शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 सालनि जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठाण, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, मरीजन जो मुआइनो करे रहियो आहे। हर किस्म जे आसाबी अमराज, जोड़न जो सूर, मैदे में जलन, कब्ज, तेजाबियत, गुर्दन जी पथरी, बवासीर, हाजमे जी खराबी ऐं बियन बीमारियुनि जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीक़ाए इलाज मुताबिक मरीजन जो इलाज करे रहियो आहे प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठाण। रोजानो सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं। जुमो मोकल, एड्रेस आगा होम्योपैथिक क्लिनिक।

ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर राबते जे लाए 03-26-22-00-440 ईद उल अजहा के पुर मुसरत मौके पर जीए सखर एफएम 88 की जानिब से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद।

0: जी जन वेलकम बैक है खुदा हिन दिल जे बदले बी दिल डे तमाम घणो सुपर एक सॉन्ग असां तांखे ॿुधायो से जनाब इन वक्त असां सभिनी सां गॾु मौजूद आहिनि गोठ पुराणे जंगूअ खां जेकोबाद खां वफ़ा अली गुल कटबार अवेस गुल अब्बास गुल कटबार अस्सलाम वालेकुम जनाब किथे सलाम चवंदा से सोनू खान मस्तोई खे वालेकुम असलाम थैंक यू सो मच पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो अदा गोठ पुराणे जंगूअ खान खां जेकोबाद खां वफ़ा अली गुल कटबार साहब तव्हांजे तमाम दोस्तनि खे असां सलाम पुॼाए छॾियासीं ऐं जनाब तव्हां सभु असां दोस्तनि सां गॾु आहियो त हाणे वठूं था जनाब शो जी नेक्स्ट कॉल ऐं पंहिंजे कॉलर खे चऊं था अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम इश्ताक भाई।
0: हां जी ईद मुबारक।
1: ख़ैर मुबारक साईं, अवां खे बि ईद मुबारक हो जना।
0: थैंक यू सो मच। त किथां पिया ॻाल्हायो, केरु पिया ॻाल्हायो था? अरे वफ़ा अली गुल कटबार साहब, तव्हांजो मैसेज मां हींअर ई पढ़ियो, ईअं न?
1: बिल्कुलु शो ॿुधायो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ॿिया ठीक ठाक मज़े में ईद जो ॾियारा कीअं पई गुज़रनि?
1: अलहमदिल्ला तमामु बहितरीन साईं, तमामु सुठो लॻो।
0: अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त, तव्हांखे असांजो शो कीअं पियो लॻे?
1: ज़बरदस्त शो, तव्हां शो हूंदो बि सुठो आहे साईं।
0: हाय थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच।
1: तव्हांजो पुराणो साथी आहे साईं ॿुधंदड़?
0: बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, असांखे यादि आहे तव्हां असांजा काफ़ी पुराणा लिसनर आहियो जा। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। इहो ॿुधायो त कहिड़ो गानो ॿुधण चाहियो था? ठीकु आहे, मां शमन मिराली प्ले कंदुमि, छो त शमन जी फरमाइश बि इलाही अचे थी। त कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
1: हा मुंहिंजो नंढा अवेस गुल अब्बास गुल सोना खां मस्तु ई, ऐं जेके दोस्त ॿुधनि था सभिनी खे सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम अदा, पंहिंजे नंढनि खे प्यार ॾिजो ऐं ईद जो ॾियारा एंजॉय कयो, गर्मी खे पाण खे गर्मी खां बचायो।
1: वॾी महिरबानी,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अदा। जी जना हमारे साथ बहुत प्यारे से अली गुल कटबार साहब, और इसके बाद हमारे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मेरा बेटा है महमूद, मुमताज का कोई सॉन्ग सुनाओ जनाब। इनाम अली जमाली हमारे साथ मौजूद है। इनाम अली जमाली अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आपके बेटे महमूद को हम शमन अली मिराली का गाना डेडिकेट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहिएगा और यूं इंजॉय करते रहिएगा। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम,
0: केरा दासा सबनी सा गद
1: जबार भंगवार?
0: केड़ो भंगवार?
1: जबार भंगवार।
0: जबार भा, केड़ा हाल चाल अथव?
1: ईद
0: मुबारक।
1: खैर मुबारक।
0: कहिड़ी तरह ईद गुज़री थी तव्हांजो ॿियो ॾियारो? माशाल्लाह माशाल्लाह। भंगवार साहब, इहो ॿुधायो, दावतूं शावतूं हलनि थियूं? दावतूं शावतूं हलनि थियूं, खाइण पीअण? वाह वाह ज़बरदस्त आहे ज़बरदस्त आहे। इहो ॿुधायो, तव्हां जिते कॉल कई आहे हुतां जो मौसम कीअं आहे?
1: मौसम सही आहे, गर्मी बि आहे, हवा बि आहे, हले थी।
0: अच्छा, हवा बि आहे, गर्मी बि आहे, मिक्स मौसम आहे माना?
1: हा मिक्स आहे।
0: हा ठीकु आहे, मां तव्हांखे शमन जो गानो थो ॿुधायां, कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो था? अच्छा मुनवर मुलाई, बिल्कुलु हलायां थो। कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो? जी जी जेका ॿुधनि था सभु। जी जी
1: हिकिड़ो मुंहिंजो भाइट अब्बास।
0: हा हा।
1: हिकिड़ो ॿियो भाइट रियाज़।
0: माशाल्लाह।
1: भाइट
0: जी जी
1: मुंहिंजी भाइट रियाज़ रफ़ीक भाइट।
0: सही सही सही, तमामु भाइटनि खे, तमामु भाइरनि खे, तमामु लिसनर्स खे त असांजी तरफ़ा खोड़ सारा सलाम, ईद मुबारकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच भंगवार भाई, थैंक यू। हमारे साथ बहुत प्यारे से भंगवार भाई, और जनाब ये भी दावतें खा रहे हैं, आप भी दावतें खा रहे हैं, लेकिन हमेशा अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और गर्मी से खुद को बचाएं। लेते हैं एक अदद सॉन्ग ब्रेक या कॉल ले लें? नहीं, कॉल तो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हम ले पाएंगे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज वॉर्टेज है। और जनाब रिजवान कांवरी ने कहा था कि शमन का गाना सुना दें, और हमारे एक दूसरे भाई ने भी कहा कि शमन का गाना सुना दें, तो बिल्कुल जनाब हम आपको सुनवाते हैं बहुत प्यारा से गाना शमन अली मिराली की वॉइस में, तो सुनिए और हमारे साथ रहिए। गोठ पुराने जंगुआ खां जेकाबाद खां वफा अली गुल कटबार की फरमाइश पर ये गाना सुनिए और हमारे साथ रहिए।

0: कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद मनाएं, सबको गले लगाएं। बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। जीए सखर एफएम 88 की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अजहा मुबारक हो।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: सिंध में कहर जी गर्मी, खैरपुर में गर्मी पद 53 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, लाड़कणो ए मोरो में पारो 51 सेंटीग्रेड ताईं पहुची वियो। मौसमियात खाते पारां हीटवेव जो अलर्ट जारी, सखर, लाड़कणो, दादू, नवाबशाह, मोहनजोदड़ो, शिकारपुर, जेकाबाद ए खैरपुर में पारो मामूल खां 4-6 डिग्री सेंटीग्रेड वधीक रहण जो इम्कान। थरपारकर, बदीन, हैदराबाद, मिंटो पास ऐं जामशोरो में बि
1: चल मेरे लाल तेरी ड्रिंक पी हलाल, मिल बैठने का इसमें गुला है कमाल।
0: घर ताईं महदूद, मौसमियात खाते इदारनि खे अलर्ट रहण ऐं अॻुवाट हिफ़ाज़ती क़दम खणण जी हिदायत करे छॾी।

अमरीका अपना हुर्मुज़ भरसा ईरान ते हवाई हमला कदर अमरीका तेहरान मथाई जंग बंदी की बजकरी जो इल्जाम लगाए छो अमरीकी अख्तियार चवण है ईरान जंग बंदी की भजकड़ी कई हमलन जो मकसद अमरीकी फौज ए आपदा हरमुस व्यापारी जहाजन के लागू खतरा खत्म करण हो ईरानी पासदारन इनकलाब जो चवण है त बंदर अब्बास भरसा बमबारी के जवाब में अमरीकी फौजी अड्डे के निशानो बणाय वियो नई अड्डे त ईरान ते हमलो कयो वियो हो। रूसी खबरू इदारे मूजिब ईरान तेल से भरल अमरीकी जहाज के अपनाए हरमुस का गुजरण की कोशिश भी नाकाम बणाए छी है।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना हुरमुस वारे मामले ते ओमान जे ईरान सा वेझड़ाई ते ओमान के तबाह ऐं बर्बाद करण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्बाल बकाई रद्द अमल ज़ाहिर कंदे चयो आहे त ट्रंप जे गॾियल क़ौमनि जे मेंबर मुल्क ओमान खे तबाह करण जी धमकी ॾियण गुंडागर्दी जी ख़तरनाक निशानी आहे। बंदरबास इलाइक़नि ते हमला आलमी कानून ऐं गॾियल क़ौमनि जे चार्टर जी बदकरी आहिनि। गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल अमरीका खे जवाब ते करार ॾियण लाइ ज़िमेवारी पूरी करे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई चयो आहे त अमरीका ऐं इसराइल फौजी शिकस्त विकिरण लाइ ईरानी क़ौम में वेझा पैदा करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। जंग वणण, इक़्तसादी दबाउ विझण ऐं सियासी प्रोपेगेंडा खां पोइ दुश्मन नवनि मनसूबनि ते अमल करे रहियो आहे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 Network सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नई का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: नकाब देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क,
2: GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।

0: किया है सिंध जी दिल मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी दादा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। जी नेटवर्क,
4: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल मैं जमीन मान चल सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क,
2: GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे है।

0: आप सुन रहे हैं
1: FM
0: DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: अपना घर माटली और

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: FM Network. या है सिंध जी दिल ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.

3772-4301 or 0333-3722-071. عید الاضحیٰ کی پرمسرت موقع پر جی میرپور خاص FM 88 کے تمام

बिल्कुल उहे बि असां गॾु ॾिसूं था त कहिड़ा कहिड़ा दोस्त कहिड़ा कहिड़ा जेके सामईन आहिनि असां सां जीअं बिल्कुलु अॼु तमामु घणे टाइम खां पोइ राब्ते में अचनि था ऐं असांजे शो में शामिल थियनि था। ईद कल खां वठी सेलिब्रेट तव्हां करे रहिया आहियो, कलो को ॾींहुं तमामु घणो बिज़ी गुज़रियो, अॼोको ॾींहुं बि बिज़ी कुर्बानी जे जेको आहे सिलसिले में ऐं कुर्बानीूं कंदे। जी हा बिल्कुलु सभई दोस्त मसरूफ़ियात जी ज़िंदगी जेका आहे उहा गुज़ारे रहिया आहिनि ऐं के हाणे त वञण जो सिलसिलो जेको आहे जारी थी वियो आहे। ईद जो टियों ॾींहुं हाणे सुभाणे खां शुरू थींदो त पोइ जी हा बिल्कुलु इहे रैलियूं मोटर साइकिलनि जूं जंहिंमें जी हा बिल्कुलु 8-10 ॿार त टिंडे पिया हूंदा हा न तस्वीरूं ज़रूर अची वेंदियूं सोशल मीडिया जे थ्रू। सोशल मीडिया ते बाबा हेतिरा खानदान जा माण्हू हिकड़ी मोटर साइकिल ते ॾिसो कीअं पिया वञनि ऐं जनाब कुर्बानी वारी गोश्त बि ननियाल ऐं ददियाल खयो पिया वञनि।

सो जनाब अब भी इंजॉय करें इस प्रोग्राम को ईद मस्ती, और ईद मस्ती के साथ में आपका आरजे अमीर आपके साथ मीरपुर खास स्टेशन से इस वक्त में आप लोगों से मुखातिब। और जनाब कहां कहां से इस प्रोग्राम को सुना जा रहा है अपने होने का एहसास मुझे दिलाएंगे 0313-6615-688 पर मैसेज करके या कॉल करके, और पैनल पे आप मैसेज कर सकते हैं। मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, लिखेंगे एमपी के और जनाब स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद अपना मैसेज टाइप करके 888 पर सेंड करेंगे अपना मैसेज। ले लाओ सुनते हैं जनाब।

0: अपना शहर अपना घर मोरो और मोरो की आवाज GFM 88।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम कॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मेन पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आई नौजवान क्यादत रेसरमन खान बुगियो, वडेरो मोहम्मद अकरम बुगियो, चेयरमैन यूनियन काउंसिल कचेरो, वडेरो निसार अहमद बुगियो, वडेरो नूर नबी बुगियो, वडेरो बाबल बुगियो, वडेरो इमदाद अली बुगियो, आई सिंध के अवाम के दिल के गहराइन से ईद जू लख लख वाधायू पेश करूं था। पारा वडेरो एजाज खान छतानी, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बुगियो, एडवोकेट करमला बुगियो, साफी एम अशरफ।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस बवासीर खूनी हुजे या बादी आराम लाए आजमुदा कोरस है। निजात बवासीर कोरस मिलने जो हंद हर छंछर ते सुबह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे तई इदनान दवाखाना नलद अच्छी मस्जिद दर्श रोड मोरो राबते लाए फोन करियो 0301346459। निजात बवासीर कोरस सुकून एतमाद आई सेहतमंद जिंदगी दा कदम। असा ईद उल अज़हा के पुरमुसरत मौके ते घरू सूबाई वजीर सिंध मोहतरम जलाल सलंजा साहब देश थोड़े परदेस में रहंदड़ मुसलमान भाईरन यूनियन काउंसिल पुराणो कचोरो जो आवाम आई सिंध के कुंड कुड़छ में रहंदड़ मोहजे मारूड़न के दिल की गहराइन से ईद जो लख लख वादायूं पेश करूं था। पारा वडेरो मोहम्मद अकरम बुगियो चेयरमैन यूनियन काउंसिल कचेरो पेटे अलफ तालका मोरो जो साबिका सदर उस्ताद जावेद अहमद बुगियो डॉक्टर शाह नवाज बुगियो। जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उगरायूं भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हर छंछर ते सुबुह जो 9 खां शाम जो 5 वॻे ताईं इदनान दवाखाना नज़द अच्छी मस्जिद दर्श रोड मोरो राबते जे लाइ फोन करियो 0301346459। शिफ़ाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी। असां ईद उल अज़हा जे हिन पुरमुसरत मौके ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को चेयरमैन मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी मैडम फरियाल टालपुर साहिबा पीएस 35 जे अवाम जियालन वर्करन एमएनएस एमपीएस ऐं वतन अज़ीज़ जे अवाम खे दिल जे गहराइनि सां ईद जूं लख लख वाधायूं पेश करियूं था। पारां ज़ियाउल सलंजार सूबाई घरू वज़ीर सिंध।
1: मोरो के हो तो आवाज भी मोरो की है। सुनते रहो GAFM 88।
2: शेरीज स्टूडियो प्रेजेंट्स।

और आज जनाब वंस अगेन जी हाँ बिल्कुल एक दफो बीहर अवे चंदी भलीकार खुशामदीद पंजे प्रोग्राम में इन वक्त जी अमीरपुर खास एफ एम आईटी के लाइव स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम अवे जारी प्रेजेंटर आर जे अमीर अवसा गड मौजूद आई दोस्तों थोड़ो आवाज वगैरह की जो सेटिंग बुधाई जो तमाम घो टाइम थो है सो इन कर खबर नी पवे तो आवाज घट अचे पो या वध अचे पो बरल उम्मीद है तो हाँ आवाज जो है मुझो अवं तीन रेडियो से जो है वो सही इंदो दो अच्छा जनाब तुम असि प्रोग्राम में शामिल थी सको था 0313615688 या मैसेज करे 8881 ते सेंड अवा मैसेज करे सको था या लाइव कॉल भी करे सको था 0313615688 ते तवा का पुछंदासी ता तवा की पहेजी जका है वा अजो को आई कलो को दी की गुजारियो कड़े तरीके से गुजारियो ईद ते जी हां बिल्कुल

0: त जी हाँ बिल्कुल जनाब ऐं अवां कहिड़े तरीक़े सां गुज़रियो, कहिड़ा दोस्त आया विया या पंहिंजो जेको आहे तव्हां किथे वियो, अचण वञण जो सिलसिलो जेको आहे हाणे शाम खां वठी जारी थी वियो आहे, ठीकु आहे। छो त हर माण्हू जेको आहे उहो कुर्बानी करे चुको आहे, बाक़ी कुझु जेके दोस्त हूंदा लाज़मी आहे त सुभाणे वारे ॾींहं जे लाइ बि उन्हनि जी जेका आहे इंतज़ारी हूंदी। मोस्टली मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त दोस्तनि जेके आहे उहा कुर्बानी करे छॾी हूंदी ऐं विरहाए बि छॾी हूंदी, ऐं हाणे हू हूंदा आज़ाद जी बिल्कुल घुमण जे लाइ। त असांखे तव्हां ॿुधाइजो त तव्हां जी हा बिल्कुल जेके रेडियो जी दुनिया जा दोस्त आहियो, जी हा बिल्कुल जेके लिसनर आहियो असां सां गॾु रेडियो ते वेठल आहियो, प्रोग्राम असां सां ॿुधो पिया था गॾु, ऐं मां प्रोग्राम कयां पियो, ऐं सुबुह खां वठी तव्हां जी एफ एम 88 नेटवर्क ते तव्हां प्रोग्राम्स ॿुधा, उन्हनि में शामिल बि थिया, पर तव्हां असांखे ॿुधाईंदो त तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी कीअं पिया गुज़ारियो, यानी की तव्हां जा ॿ ॾींहं कीअं गुज़रिया आहिनि, अॼु तयारी छाजी थिए पई थी, कुझु गोश्त वग़ैरह खाधो थो या न, भला नेक्स्ट फर्स्ट कॉलर जी तरफ़ हूंदा ॾिसूं था त असां सां केरु केरु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुलु ठीकु ठाक, कौन है हमारे साथ? माशाल्लाह गाज़ी ख़ान रिंद। गाज़ी ख़ान रिंद असां सां किथां खां ज्वाइन कयो आहे? माशाल्लाह बदीन खां तव्हां ज्वाइन कयो आहे, तव्हां असांखे ॿुधायो भला बदीन वारनि पंहिंजी ईद कीअं मल्हाई
1: आहे?
0: सुठी गुज़री
1: आहे।
0: ओके थैंक यू प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ, थैंक यू प्रोग्राम में सही शामिल थियण जे लाइ मोहबतूं, अलाफ़ीज़ अलाफ़ीज़ अलाफ़ीज़। राय जनाब गुलाब लगारी ज़िले बदीन खां ज्वाइन कयो हुयो असांजे हिन महिरबान दोस्त जेको असांजे हिन प्रोग्राम खे ॿुधे पियो थो, मोहबतूं लख लाइक तव्हां ज्वाइन कयो आहे, ऐं नेक्स्ट कॉलर जी तरफ़ हलूं था ॾिसूं था त असां सां लाइन ते केरु गॾु मौजूदु आहिनि। अड़े वाह सी वाह, मोहम्मद अजीज जरवार। अच्छा ही वो मोहम्मद अजीज जरवार है जे कल गोश्त तमाम घणो खाधो?
2: जी जी।
0: हाँ छिके रख सजन, छिके रख।
2: हाँ
0: बस बाबा पेट पंहिंजो आहे, बरहाल छिके रख कम के। हाँ ईअं न पेट खराब थी वञे। अच्छा गोश्त खां अलावा भला कुझु खाधो आहे? छो त ही चवंदा त भले ही कुर्बानी वारो जेको आहे कुर्बानी वारी ईद आहे त हिन में गोश्त ई गोश्त खाईंदा आहियूं, भला गोश्त खां सवाइ को ॿियो मिठो वग़ैरह खाधो आहे कोन खाधो आहे? कुझु त ज़ाइको चेंज थिए न? शयूं शयूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं खाधियूं आहिनि? खटुमड़ा खाधा, किटमिटा खाधा, छा खाधा? सयूं, अच्छा सयूं खाधियूं, सवयूं। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, तमामु बहितरीन ख़बर आहे। हाय अच्छा कहिड़ा कहिड़ा दोस्त, कहिड़ा कहिड़ा दोस्त आहिनि तव्हांजा? अलाफ़ीज़ अलाफ़ीज़। अच्छा जनाब 0313615588 असांजो नंबर आहे, हिन नंबर ते तव्हां कॉल कंदो प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। किथां किथां खां दोस्त असांजे हिन प्रोग्राम में शामिल थियनि पिया ॾिसूं था, नेक्स्ट कॉलर जी तरफ़ हलूं था। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम हमीर भा, जिलूरी खां ख़ालिक लाशारी।
0: माशाल्लाह जिलूरी खां ख़ालिक लाशारी साहब असां सां गॾु मौजूद। ख़ालिक कहिड़ा हाल आहिनि, ख़ुशि आहियो, तबियतूं ठीक आहिनि? ख़ैर मुबारक तव्हांखे बि, ईद मुबारकूं। ॿियो ठीकु आहे? अच्छा कीअं भला ईद गुज़री, कल्ह वारो ॾींहुं अॼोको ॾींहुं कीअं गुज़रियो तव्हांजो?
3: मशहूरु आहे, हल माना
0: असुल वाह वाह है ना
3: असुल वाह वाह दोस्तों जो माशाल्लाह ठीक ठाक इंजॉय माने वी वी

0: असां ईद उल अज़हा जे पुरमुसरत मौके ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी को चेयरमैन ऐं सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी पीपी लेडीज़ विंग जी मर्कज़ी सदर मैडम फरियाल टालपुर साहिबा सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई सदर निसार अहमद खड़ो डिवीजनल सदर शहीद बेनज़ीराबाद ऐं घरू वज़ीर सिंध ज़ियाउल सलंजार पीपी एमपीए ममताज़ अली चांडियो पीपल्स पार्टी ज़िला नौशहर फिरोज़ जो सदर सुहेल अख्तर अब्बासी समूरन एमएनएस एमपीएस पीपल्स पार्टी उहिदेदारन वर्करन ऐं गोराहो बिरादरीअ समेत सिंध जे अवाम खे दिल जी गहराइयुनि सां मुबारकबाद पेश करियूं था। पारां पीपल्स पार्टी अॻवान रेस परवेज़ अहमद गोराहो।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

0: सुराज जनाब एक दफो बीहर अवां के चंदासी भलेकार जी मीरपुर खास एफएम 88 जे लाइव स्टूडियो मा लाइव प्रोग्राम अवां जे ला जारी मा तवां जो पेंजो प्रेजेंटर आरजे अमीर अवां सगत मौजूद आई जनाब तवां मैसेज भी कर सको ता तवां कॉल भी कर सको ता इनी नंबर ते 0313615688 ते जेके कॉल तवां जी नथी लगे त पे तवां मजो मैसेज जरूर इंदो मैसेज जरूर कीजिएगा जनाब इसी नंबर पर और अपने होने का एहसास दिलाएं। देखते हैं कि लाइन पर कौन है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा जनाब आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं कॉल लगा के ये कहीं। जी हाँ बिल्कुल, गोश्त खाने तो नहीं चले गए लगे सर, या गोश्त की जो बोटी होगी वो जो है वो मुंह में रख के बात कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सही कह रहा ना ससा कर लाइन थे प्रोग्राम में
1: मीर भाई सबका पहला ताके ईद मुबारक हो।
0: खैर मुबारक हो। खैर मुबारक हो तवा के ईद मुबारक हो।
1: खोड़ा शहर का हाफिज बहुत जमीन दर्ज कर
0: उसका। खोड़ा शहर का हाफिज जमीन केड़ा हालन खुश हो तबीयत तू ठीक न
1: जी जी सर अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश आए तबीयत तो ठीक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल की ईद गुजरी भला तहा जी
1: तमाम बेहतरीन दादी सुखे गुजरी
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा प्रोग्राम तो आगे की लगे
1: प्रोग्राम प्रोग्राम
0: लगो तमाम बेहतरीन
1: प्रोग्राम जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: इंशाल्लाह जुड़ू था वरी भी एक दफो बीहर ठीक है। थैंक यू प्रोग्राम में शामिल थे जलाए मोहब्बत खैर खैर
1: सलाम।
0: थैंक यू थैंक यू। खैर खैर मुबारक हूँ। थैंक यू मोहब्बत प्रोग्राम में शामिल थे आयो 0313615688। जी हाँ बिल्कुल मसरूफियात तमाम घनी है बहरहाल मसरूफियात में टाइम कढ़ी करे टाइम दियणो पवंदो एक ब प्रोग्राम्स जो है इनशाला तवा जे लाइ सुठा नवा खणी ईंदासीं पंहिंजे हिन चैनल ते। जी हाँ बिल्कुल मीरपुर खास एफएम 88 ते एंड जनाब 88 नेटवर्क ते नेक्स्ट कॉलर जी तरफ हलूं था। अस्सलाम वालेकुम। यो छाए हेलो ओके। अच्छा जनाब यही आवाज दोस्त के बुधाइनो हो या तो को नेटवर्क इशू आए सो इन करे नेक्स्ट कॉलर की तरफ हलूं था। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम सर खुश आयो तबे सही आ तवा के रख रख
0: बिल बिल्कुल ठीक ठाक से केरना ससा गड लाइन पे प्रोग्राम में यार यो जहाज किथां पे हले तवा वट।
2: हेलो
0: माचो तवा हेलीकॉप्टर आयो आ जा मथे
2: न सर
0: आवाज एडो पे आयो जी हेलीकॉप्टर जो आवाज जे
2: अच्छा
0: अच्छा केर न ससा गड लाइन ते प्रोग्राम में नौशरो फेरोज मां तवा ज्वाइन कियो आ तवा के वेलकम चंदा सी भलीकार चंदा सी पजे प्रोग्राम में अल्लाह शुक्र तमाम बेहतरीन सुठी गुजरी असांजी भी ईद अवां जे लाइ भी दुआऊं आहिनि इंशाल्लाह तव्हांजी सुठी ईद गुजरंदी सुभाणे वारो ॾींहुं बि इंशाल्लाह तव्हांजो सुठो गुज़रंदो। थैंक यू प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ मोहबतूं जी। कहिड़ा कहिड़ा दोस्त दोस्त कहिड़ा कहिड़ा आहिनि वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ मोहबतुनि जे लाइ लख लाइक। अच्छा जनाब हिकिड़ो तमामु बहितरीन ज़बरदस्त ट्रैक आहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल रखनि इन खां पोइ ख़बरूं आहिनि ख़बरुनि खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर अथव। گڈ موجود ٹھیک اوکے جی ہی تھیو ہتے آہا سائیں سائیں منجا سائیں منجا سب کا ودھیک تو آہیں آہا او سائیں نکر

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अमेरिका ईरान विच में जंगपंथी में वाद जो मायदो बाबत गवर्नमेंट रास्तो जाहिर कयो आहे। वाइदे जे घणनि शिकर ते अगारे वारे जी इतफ़ाक थी चुको हो। ॿिन्ही मुल्कनि जे आला क़यादत जी मंज़ूरी अञा बाक़ी आहे। 60 ॾींहनि वारे मुफ़ामती वाइदे में आपदा हरूस मां जहाज़नि खे बिना रुकावट गुज़रण जी शिक शामिल हूंदी। ईरान 30 ॾींहनि अंदर आपदा हरूस मां बारूदी सुरंगू हटाईंदो ऐं अमरीका ईरान जी सामूंडी नाकाबंदी ख़त्म कंदो। मुफ़ामती यादाश्त ते सही जंग खां पोइ सभ खां वॾी कामयाबी हूंदी।

आपल्या हल्लेखोरांवर इराण ते हवाई हमला करतात. इराण जंगबंदी जी बदकड़ी कदे कुवैत तरफ बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया जिनके हुई फोर्सिस कामयाबी सां तबाह करे छो. अपना हल्लेखोर भरसा अमरीकी हमलन जो मकसद फौज ए व्यापारी जहाजन के लागू खतरा खत्म करण हो. ईरान जे पासदारन ए इंतलाब भी चवण है त बंदर अब्बास भरसा व्यापारी जे जवाब में अमरीकी फौजी अडे के निशानो बणाए वियो. इन ई अडे तां ईरान ते हमलो कयो वियो हो. रूसी काबू इदारे मूजिब ईरान तेल सां भरियल अमरीकी जहाज अपनाए हरमूज मां गुज़रण जी कोशिश भी नाकाम बणाए छॾी आहे. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनाए हुर्मुज़ बारे मामले ते उमान जे ईरान सां वेझराई ते उमान खे तबाह ऐं बर्बाद करण जी धमकी ॾेई छॾी. ईरान जे परॾेही तर्जुमान इस्पान फकाइर ते अमल ज़ाहिर कंदे चयो आहे त ट्रंप जे गॾियल क़ौमनि जे मेंबर मुल्क उमान खे तबाह करण जी धमकी ॾियण गुंडागर्दी खे ख़तरनाक निशानी आहे. बंदर अब्बास जे इलाइक़नि ते हमला आलमी कानून ऐं गॾियल क़ौमनि जे चार्टर जी भञकड़ी आहिनि. गॾियल क़ौमनि जी सलामती काउंसिल अमरीका खे जवाब ते करार ॾियण लाइ ज़िमेवारी पूरी करे. ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई चयो आहे त अमरीका इसराइल फौजी शिकस्त विकाइण लाइ ईरानी क़ौम में वेझा पैदा करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि. जंग बणण इक़्तिसादी दबाउ विझण ऐं सियासी प्रोपेगेंडा खां पोइ दुश्मन नवनि मनसूबनि ते अमल करे रहियो आहे. पाकिस्तान खे एटमी ताक़त बणे 28 साल थी विया. समूरी मुल्क क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां योम तकबीर मल्हायो वियो. सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त पाकिस्तान जे दिफ़ाई हिकमत अमली ख़िते में अमन ऐं इस्तेकाम जी ज़ामिन आहे. 28 मई 1998 ते जाकी जे पहाड़नि ते कामयाब एटमी धमाका करे स्टेट जे ख़ुदमुख़्तारी ऐं दिफ़ाई तवाज़ुन हासिल कयो. समूरनि चैलेंजेस खां आगाहियूं ऐं इन्हनि खे मुंहुं ॾियण जी सलाहियत रखूं था. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त योम तकबीर पाकिस्तान जी तारीख़ जो अज़ीम ऐं फ़ैसिलाइतो ॾींहुं आहे. शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज़ शरीफ़, डॉक्टर अब्दुल क़ादिर ख़ान ऐं डॉक्टर समर मुबारक खे ख़िराज तहसीन पेश कयां.